0: ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है, 102.8 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
2: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केशगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारे संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

0: कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिससे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में 3रे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। शास्त्रों में कहा गया है, शब्द से इंसान की पहचान होती है। शब्द एक तरह का भोजन ही है, अगर स्वयं को अच्छा न लगे तो दूसरों को मत परोसिए। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुने भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा में प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारा अगला कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंकलीकर। पुराने फिल्मी गीत कार्यक्रम पुराने फिल्मी गीत सुनिएगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में हमें राही प्यार के ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 7:30 पर। त्रिवेणी कार्यक्रम 8:15 पर। चित्रलोक ये कार्यक्रम सुनिएगा 8:30 पर।

गायक और संगीतकार भूपेंद्र सिंह पर केंद्रित होगा आज के फनकार कार्यक्रम सुबह और रात, सुबह 9:30 पर और रात 9:30 पर। दस बजे गीतों भरी कहानी, भाई हो तो ऐसा, लेखक और वाचन स्वर श्याम माहेश्वरी का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी।

11:30 पर मैटिनी शो के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे रूपक जल है तो कल है। इसके अंतर्गत पर्यावरण विशेषज्ञ शुभज्योत मुखर्जी से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की। यादों की महफिल ये कार्यक्रम सुनिएगा 12:05 पर। 1 आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुरीला सफर, सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 2:30 पर। मन चाहे गीत ये कार्यक्रम दिन में 3 से। दिन में 3:30 पर नाट्य तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे नाटक जमीन आसमान, लेखक हैं अनूप सेठी। 4 बॉम्बे टॉकीज में सुनिएगा लेखिका निर्देशिका सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। छाया गीत कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण 5:00 से। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम सुनिएगा 5:30 पर। संध्या रंजन ये कार्यक्रम 6:35 पर शाम। शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। अभिनेत्री जरीना वहाब द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम का प्रसारण होगा 7:00 से। ज्ञान विज्ञान का कार्यक्रम जिज्ञासा का प्रसारण किया जाएगा 7:45 पर। रात 8 हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत सुनो कहानी विश्वास का 3रा भाग आपको सुनवाएंगे। ये है मुंशी प्रेमचंद की कहानी का रूपांतरण, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। चित्रलोक कार्यक्रम रात 8:15 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम सुनिएगा 9:00 से। भूपेंद्र सिंह पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम 9:30 पर। छाया गीत कार्यक्रम 10:00 से। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम सुनिएगा 10:30 पर। झरोखा में ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरितमानस गान भाग 253, प्रसंग है अरण्यकांड।

शूर्पणखा से खर दूषण समेत राक्षसी सेना के विध्वंस का वर्णन सुन रावण के अंग प्रत्यंग जल उठे। बालक दिखने वाले दशरथ पुत्रों की वीरता और उनके साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री के होने का समाचार जान रावण सोच में पड़ जाता है। वो जानता है कि देवता, मनुष्य, पशु पक्षी किसी योनि में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उसके सेवकों का भी सामना कर सके। यदि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए स्वयं भगवान ने ही अवतार लिया है तो वो हट पूर्वक उनसे वैर मोल लेगा और स्वयं प्रभु के वाणों से मारा जाकर मुक्ति प्राप्त करेगा। ऐसा निश्चय कर वो रथ पर अकेला सवार होकर वहां चला जहां सागर तट पर मारीच रहता था।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन गाए बजाए जाने वाले रागों की चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की कड़ी में आज सुनिए राग पूरिया कल्याण।
1: संगीत सरिता सुनने वालों को आरती अंकलीकर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप तो जानते हैं कि हम संधि प्रकाश रागों के बारे में कुछ विवरण कुछ चर्चा यहाँ कर रहे हैं। इन्हीं रागों में संधि प्रकाश राग पूरिया कल्याण, इसके बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कई बार हमने देखा है कि गायक जो है पूर्वा कल्याण और पूरिया कल्याण इनको एक ही राग समझ के जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूर्वा कल्याण एक अलग राग है और पूरिया कल्याण अलग है। पूर्वा कल्याण में जो ऋषभ है वो मारवा की तरह और पूरिया कल्याण में ऋषभ जो है पूरिया की तरह लगता है। हालांकि देखा जाए तो इसके स्वर एक ही हैं, लेकिन ये जो ऋषभ का ट्रीटमेंट जो है वो दोनों रागों में अलग है। इसकी वजह से पूरिया कल्याण और पूर्वा कल्याण ये दोनों अलग दिखते हैं। आज हम पूरिया कल्याण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पूरिया कल्याण का जो जन्म है मारवा ठाट से हुआ है। आप जानते हैं कि ये सायंकालीन संधि प्रकाश राग है। संध्याकाल में पूर्वी और भैरव ठाट जन्य पूर्वी गौरी आदि रागों के गाने के पश्चात इस राग को गाना चाहिए। इसका कारण आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसमें धैवत जो है शुद्ध लगता है। और पूरिया पूरिया धनाश्री श्री, लेकिन बाकी जो राग हैं उनमें धैवत कोमल है, मारवा में तो शुद्ध है। तो इन रागों को गाने के बाद, यानी पूरिया धनाश्री पूरिया, इन रागों के बाद कोमल ऋषभ और शुद्ध धैवत लेके जो राग आते हैं उनकी बारी आती है। तो ये पूरिया कल्याण जो राग है संधि प्रकाश राग होने के साथ साथ एक परमेल प्रवेशक राग भी है। कोमल ऋषभ के साथ शुद्ध धैवत होने के कारण ये राग अपने पश्चात आने वाले रे ध शुद्ध वर्ग के रागों की पूर्व सूचना देता है। रे ध शुद्ध वाले रागों के पूर्व एवं रे ध कोमल वाले सायंकालीन संधि प्रकाश रागों के समय, यानी कि 4 से 7 बजे सायंकाल के अंतिम चरण में इस राग को गाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो प्रचार में तो लोग 11 बजे तक भी इसको गा देते हैं, बजा देते हैं, लेकिन ये उसका सही समय नहीं है। इसको 7 बजे यानी कि सायंकाल के अंतिम चरण में ही गाना चाहिए। इसका वादी स्वर है गंधार, संवादी है निषाद। पूर्यांग से पूर्या कल्याण जो जाता है हम देख चुके हैं। इसका आरोह अवरोह इस प्रकार है।

राग पूरिया कल्याण पर आधारित अब एक गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन गाए बजाए जाने वाले रागों की चर्चा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मशहूर गायिका आरती अंकलीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अभी आप सुन रहे थे उमा देवी और सुरैया की आवाजों में शकील बदायूनी का लिखा ये गाना। संगीतकार थे नौशाद और फिल्म थी दर्द। आइए अब सुने गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। रचना है राजेंद्र कृष्ण की।

गेटवे ऑफ इंडिया। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार मदन मोहन। ये गाना भी मदन मोहन का स्वरबद्ध किया हुआ। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें। इंदिवर के बोल, फिल्म है छोटे बाबू।

ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है 102.8 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी के पुणे केंद्र से मराठी में समाचार सुनेंगे।

कुमार बाराबंकी का लिखा ये गाना था, फिल्म थी बारादरी और इसे गाया मुबारक बेगम और लता मंगेशकर ने। आज दोस्तों मुबारक बेगम की याद का दिन है। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के कुछ गाने उन्हीं की याद को समर्पित थे। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

साहिल लुधियानवी का लिखा ये गाना था, खयाम का संगीत था, फिल्म थी शगुन और आवाजें थी तलत महमूद, मुबारक बेगम की। दोस्तों आज जानी मानी गायिका मुबारक बेगम की याद का दिन है। हमेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी कुछ गाने हम आपको सुनवा रहे हैं मुबारक बेगम की आवाज़ में।

मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये था हसरत जयपुरी का लिखा गाना। संगीतकार थे शंकर जयकिशन, फिल्म थी हमराही।

बाल कवि वैरागी का लिखा ये गाना आप सुन रहे थे तलत महमूद और मुबारक बेगम की आवाजों में। फिल्म थी गोगोला। गंगा फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं महेंद्र कपूर और मुबारक बेगम की आवाजों में।

बालकवि बैरागी का लिखा गाना आप सुन रहे थे, मुबारक बेगम और तलत महमूद की आवाजों में। फिल्म थी गोगोला। हमें रही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी गाने आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।

उस्तादी उस्ताद से इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में। संगीतकार थे राम लक्ष्मण। दोस्तों आज भूपेंद्र सिंह का जन्मदिन है, ये गाना उन्हीं के नाम था। और आज जाने माने अभिनेता राजेश खन्ना की याद का दिन है, सुनिए ये गीत उनकी याद को समर्पित फिल्म दो रास्ते। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

आराधना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन। इसी के साथ आज का हमें राही प्यार के कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
4: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
3: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
4: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस से बेस सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
3: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
7: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
8: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है न धुआं न

0: प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में PV सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सिलसिला ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो किसी न किसी सिलसिले का हिस्सा होता है। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंतिम पहर तक हर पल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रिश्तों का सिलसिला, सपनों का सिलसिला, संघर्षों का सिलसिला और सफलताओं का सिलसिला यही जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि प्रकृति भी एक अनवरत सिलसिले पर ही आधारित है। ऋतुओं का बदलना, नदियों का बहना, समय का आगे बढ़ना हमें यही सिखाता है कि रुकना जीवन का स्वभाव नहीं है। जीवन तब तक सुंदर है जब तक उसके भीतर आगे बढ़ने का सिलसिला बना रहता है।

जीवन के इस सफर में कई बार कुछ सिलसिले अचानक टूटते हुए प्रतीत होते हैं। कोई अपना दूर चला जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, या परिस्थितियां हमारी उम्मीदों के विपरीत हो जाती हैं। ऐसे क्षणों में लगता है कि सब कुछ थम गया है, लेकिन वास्तव में जीवन कभी रुकता नहीं। एक अध्याय समाप्त होता है तो दूसरा प्रारंभ हो जाता है। यही समय का नियम है और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई भी। टूटे हुए सिलसिलों की राख से ही नए अवसर जन्म लेते हैं। इसलिए कठिन परिस्थितियां हमें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि एक नए सिलसिले की शुरुआत करने के लिए आती हैं। जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं, वे हर अंत में एक नई शुरुआत खोज लेते हैं।

मानव सभ्यता का इतिहास भी एक लंबे और प्रेरणादायक सिलसिले की कहानी है। पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन ज्ञान, संस्कार, संस्कृति और अनुभवों का प्रवाह लगातार आगे बढ़ता रहा। आज हम जो कुछ हैं, वो उन अनगिनत लोगों के प्रयासों का परिणाम है जिन्होंने अपने समय में कुछ अच्छा करने का सिलसिला जारी रखा। यही कारण है कि हमें भी अपने कर्मों, अपने मूल्यों और अपने सकारात्मक विचारों का सिलसिला बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे प्रयास भविष्य की किसी बड़ी कहानी का आधार बन सकते हैं। अंततः जीवन का सार यही है कि हम उम्मीद, प्रेम और मानवता का सिलसिला कभी टूटने ना दें। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, तब तक जीवन में अर्थ, ऊर्जा और आनंद बना रहेगा।

0: सुल्तान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में शब्दकार थे इरशाद कामिल और संगीतकार विशाल शेखर।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

गुरु रंधावा की आवाज में ये गाना आप सुन रहे थे। फिल्म थी हिंदी मीडियम। आज जाने माने फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का जन्मदिन है। प्रियंका चोपड़ा को देते हैं हम ढेर सारी बधाइयां पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। फिल्म है कृष 3। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें, समीर अंजान के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
2: जी।
1: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और आज जानी मानी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का जन्मदिन है। साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रियंका चोपड़ा ने अभिनय की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बॉलीवुड की सफल फिल्मों से लेकर हॉलीवुड के प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट्स तक उन्होंने हर मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अभिनय के साथ साथ वे एक सफल निर्माता भी हैं और समाज सेवी भी हैं। शिक्षा, बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर भी वे सक्रिय भागीदारी देती हैं समय समय पर। प्रियंका चोपड़ा की कहानी हमें ये विश्वास भी दिलाती है कि आपके इरादे अगर मजबूत हैं, मेहनती हैं आप, तो मंजिल आप जल्द पा सकते हैं। चलिए उन्हीं की फिल्म का गाना सुनते हैं, ये फिल्म मेरी कॉम, अरिजीत सिंह की आवाज है, संदीप सिंह के बोल हैं, शिवम का संगीत।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से ब्रेक के बाद।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: द स्काई इज पिंक इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। रचना थी गुलजार की, संगीतकार प्रीतम।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए

तुम बिन टू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आर्को और साथियों की आवाजों में मनोज मुंतशिर के बोल थे। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

0: डेढ़ इश्किया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज की आवाज में। गुलजार के बोल थे, विशाल भारद्वाज का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: पर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज।

साहेब बीबी और गैंगस्टर 3, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे नूरा सिस्टर्स अमित गुप्ता और साथियों की आवाजों में। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 1455 वर कॉल करा.
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो.
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ. एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी. पेमेंट लिंक भी भेजा है.
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है. धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं.
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो. सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें.
2: समझ गया.

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी आवाज जिसके बारे में गुलजार साहब ने कहा था, उनकी आवाज ऐसी है जैसे किसी पहाड़ी से टकराने वाली बारिश की बूंदें, वो तन मन को तरोताजा कर देती हैं। उनकी मखमली आवाज आत्मा तक सीधे पहुंच।

दिलचस्प बात यह है कि आज उनकी आवाज की बातें कम होंगी, बल्कि उनके गिटार की बातें ज्यादा होंगी, जो उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मी गानों में बजाया। यानी ये तय है कि आज के फनकार कार्यक्रम में आज ऐसी प्रतिभा की बातें हो रही हैं जो एक बेहतरीन गायक थे, लेकिन उसके साथ साथ थे एक बेमिसाल गिटार वादक, और उनके गिटार से सजे हैं फिल्मी दुनिया के कुछ बेमिसाल गाने। ये शायद पहली बार हो रहा है कि आज के फनकार कार्यक्रम में हम इस गायक की गायकी की प्रतिभा की बातें कम करें और उनके गिटार की बातें ज्यादा करें। आज के फनकार आज केंद्रित है जाने माने गायक और गिटार वादक भूपेंद्र सिंह पर।

भूपिंदर सिंह का जन्म 6 फरवरी 1940 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। उनके पिता एक जाने माने गायक और संगीतकार थे, उनका नाम था नत्था सिंह। उन्होंने भूपिंदर को गाने की और गिटार की तालीम बचपन से ही देनी शुरू कर दी थी। बचपन के इन दिनों में ही भूपिंदर की दिलचस्पी गजल गाने में भी हो गई थी और वो आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ गए थे। फिर ये हुआ कि संगीतकार मदन मोहन एक बार दिल्ली आए। जाने माने संगीतकार सतीश भाटिया के घर पर एक पार्टी दी गई और इस पार्टी में मदन मोहन ने भूपिंदर सिंह को सुना। मदन जी ने कहा कि तुम्हें मुंबई आना चाहिए और वहां गायकी में अपनी तकदीर आजमानी चाहिए। इसके कुछ दिन बाद भूपिंदर को चेतन आनंद ने बुलाया फिल्म हकीकत के इस गाने को गाने के लिए। जरा सोचिए कि एक दुबला पतला नौजवान और उस स्टूडियो में थे कितने सारे लेजेंड, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, तलत महमूद और इन सब के बीच भूपिंदर

0: कौन थे।
1: भूपिंदर सिंह वैसे तो स्पेनिश गिटार बजाया करते थे, लेकिन मुंबई में गिटार की और ज्यादा बारीकियां उन्होंने सीखी भारतीय फिल्म उद्योग के बेमिसाल गिटार वादक भानु गुप्ता से, जो आरडी बर्मन की टीम का हिस्सा थे। तकरीबन 2 बरस तक भूपिंदर सिंह भानु गुप्ता से सीखते रहे। फिर एक इत्तेफाक हुआ, भूपिंदर सिंह मुंबई में एक 12 स्ट्रिंग गिटार खरीद रहे थे। उनके साथ गए थे फिल्म उद्योग के एक और गिटारिस्ट सुनील कौशिक। इत्तेफाकन भूपिंदर सिंह की मुलाकात आरडी बर्मन से हुई, और उसके बाद आरडी बर्मन से भूपिंदर का जो नाता बना, वो आरडी बर्मन के इस दुनिया से जाने यानी 1994 तक कायम रहा। पंचम के लिए भूपिंदर सिंह ने कई गानों में बेमिसाल गिटार बजाया है, उसकी बातें करेंगे बाद में। लेकिन पहले आपको बताएं कि हकीकत आने के बाद फिल्म आखिरी खत आई 1966 में। इस फिल्म में भूपिंदर सिंह ने न केवल एक गाना गाया, बल्कि इस गाने को उन्हीं पर फिल्माया भी गया।

सन 1968 में भूपेंद्र सिंह ने पहली बार अपनी गजलों का एक ईपी रिलीज किया। ईपी यानी छोटा वाला रिकॉर्ड। इसमें उन्होंने गालिब और प्रेम जलंधरी को गाया था। इसके बाद भूपेंद्र सिंह का दूसरा एल्बम आया, जिसमें उन्होंने गजलों में स्पेनिश गिटार, बास और ड्रम्स का इस्तेमाल किया। और फिर गुलजार साहब के साथ वो जो शायर था, गजलों के पूरे स्ट्रक्चर को भूपेंद्र सिंह ने पूरी तरह से बदल दिया। बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही प्रयोगवादी एल्बम था वो जो शायर था। पर आज भूपेंद्र की गायकी से ज्यादा बातें होने वाली हैं भूपेंद्र के गिटार की। पंचम के साथ भूपेंद्र के गिटार की तरंगें अब आपको सुनाई देंगी। सबसे पहले 12 स्ट्रिंग गिटार का जादू, फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्ण।

बातें हो रही हैं उन गानों की जिनमें संगीतकार आर डी बर्मन के निर्देशन में भूपिंदर सिंह ने बजाया गिटार। फिल्म का नाम जवानी दीवानी।

0: सत्ते पे सत्ता, आह क्या गाना है। इस गाने में गिटार भूपिंदर ने बजाया था।
1: तुमने वो क्या देखा

आरडी बर्मन ने बतौर गिटारिस्ट ही भूपिंदर सिंह का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में पंचम से गाने भी गवाए। सन 1972 फिल्म परिचय।

आरडी बर्मन के साथ भूपिंदर के गिटार का जादू आपको सुनाई पड़ता है 1975 में आई फिल्म शोले के इस गाने में।

ऐसा नहीं है कि भूपिंदर सिंह ने सिर्फ आरडी बर्मन के लिए ही अपने गिटार के तार छेड़े। भूपिंदर सिंह ने मदन मोहन के लिए कुछ फिल्मों में गिटार बजाया, जैसे फिल्म

फिल्म कादंबरी के इस गाने में भूपिंदर सिंह ने गिटार बजाया, संगीत वलायत खान साहब का था। आशा भोसले का ये गाना, कविता अमृता प्रीत।

इस गाने में भूपिंदर सिंह ने एकॉस्टिक गिटार बजाया, सुनील कौशिक ने इलेक्ट्रिक गिटार, फ्रेंको वाज ने ड्रम्स बजाए और आज के जमाने के जाने माने संगीतकार ए आर रहमान तब इलैया राजा के साथ कीबोर्ड बजाते थे।

0: गले लगा ले।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने खास तौर पर भूपेंद्र सिंह को याद किया और फोकस किया उन गानों पर जिनमें है भूपेंद्र सिंह का बजाया गिटार। पर उनकी आवाज के बिना इस कार्यक्रम को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो एक झलक उनके कुछ मशहूर गानों की।

0: भूपिंदर सिंह तो चले गए, लेकिन रह गए वो गाने जिनमें उनका गिटार है, रह गई उनकी गजलें और रह गए उनके फिल्मी गाने। भूपिंदर सिंह हमें हमेशा शिद्दत से याद आएंगे। विनम्र नमन। आज की फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने गायक और गिटारिस्ट भूपिंदर सिंह पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का था। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: आज के फनकार।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
2: जी।
1: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।

0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती कार्यक्रम गीतों भरी कहानी, बस थोड़ी ही देर के बाद।
2: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्याम महेश्वरी की कहानी भाई हो तो ऐसा। वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का।
3: अज्जू विज्जू की जोड़ी हमेशा चर्चा में रहती। परिवार में कहीं भी कुछ भी काम हो, जन्म मरण, शादी ब्याह, दोनों भाई लगकर काम करते हैं। अज्जू माने अजय बड़ा भाई और विज्जू माने विजय छोटा भाई। 8 साल का अंतर था दोनों में, लेकिन दोनों की पट्टी बहुत। पटने का कारण था बड़े भैया अजय। विज्जू का बड़ा ध्यान रखते और विज्जू बड़े भैया को भगवान मानता। माने भी क्यों ना, पिक्चर जाना हो, वो भगत जी की रबड़ी जलेबी खाना हो या कुछ और, बड़े भैया अज्जू ही बंदोबस्त लगाते। विज्जू को पिताजी से बड़ा डर लगता, लेकिन अज्जू भैया में कुछ बात थी, पिताजी उनकी बात मान ही जाते। दोनों के बीच में दो बहनें, वो बड़ी वाली बड़े भैया की चमची और छोटी वाली विज्जू की सहेली। पूरा कुनबा बाहर से चाक चौबंद दिखता और अंदर से उससे भी ज्यादा मजबूत।

उस दिन विज्जू ने बड़ा खेल कर दिया। स्कूल से एक पत्र मिला था चेतावनी वाला, यदि विजय 6 मासिक परीक्षा के किसी भी विषय में फेल हुआ तो फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। विजय बाबू ने चतुराई से उस चेतावनी पत्र पर पिताजी के हस्ताक्षर खुद कर दिए। 6 मासिक परीक्षा हुई और विजय बाबू फेल हो गए। पत्र के आधार पर पिताजी को तलब किया गया। अब पिताजी को कहां से और कैसे ले आए विजय? परीक्षा वरीक्षा तो बात की बात थी, पिताजी तो इस कृत्य पे विजय की पहले ही जान ले लेते। ये बात बड़े भैया अज्जू को बताई गई और वो पहुंचे स्कूल विज्जू के अभिभावक बन के। बड़े भैया के इशारे पर विज्जू प्रिंसिपल मैडम के पैर में लौट गया, लेकिन प्रिंसिपल मैडम टस से मस ना हो। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझी भैया को, बड़े ड्रामाटिक अंदाज में खुद पैरों पर गिर पड़े प्रिंसिपल मैडम के और माफी मांगने लगे। प्रिंसिपल मैडम की तो हंसी छूट गई और फिर हिदायतें देकर माफ भी कर दिया विज्जू को। विज्जू परीक्षा में फिर पास भी हो गया, लेकिन उस वाक्य को याद करके आज भी आंखें गीली हो जाती है अपने भैया की उदारता।

विजय कुछ 18-19 साल का रहा होगा। बड़े भैया अब दुनिया की आपाधापी में उलझ गए थे, 4-5 तरीके के धंधों में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं कुछ बात बनी नहीं। उम्र हो गई थी सो उनकी शादी की बात चल निकली थी, और ऐसे में काम का ना होना और बड़ी दिक्कत दे रहा था। भैया के किए सारे एहसानों का विजू को स्मरण हो आया। यही वजह रही होगी शायद, भैया जो बोलते विजू कर डालता। मतलब वो दादाजी के खेत संभालने की जिम्मेदारी आई विजू पे, तो भैया के कहने पर वो भी कर दिया। वो जो नहीं बोलते विजू वो भी कर देता। वो कचरे से बिजली बनाने का काम किया भैया ने, तो विजू फैक्ट्रियों में घूम घूम के कचरा भी लाद लाद के इकट्ठा करता रहा। बड़ी बहन हालांकि बड़े भैया से छोटी थी, लेकिन उनकी शादी बड़े भैया की शादी से पहले हो गई। विजू शादी में इतना काम कर चुका था कि बहन की विदाई का समय आते आते वो कहीं पसर के सो गया। बड़े भैया ने ही आकर जगाया, बोले दीदी विदा हो रही है, आ जा, उनको बाय बोलकर सो जाना। मम्मी और बड़े भैया खूब रोए दीदी के विदाई पे। विजू को दीदी के जाने का रोना तो नहीं आया, लेकिन भैया को इतना रोते देख वो भी रो दिया। बैंड वाले ने वो विदाई वाला गाना बजा के माहौल और भी गमगीन कर दिया था।

बड़ी बहन की शादी के बाद दादाजी चल बसे। अज्जू भैया का वो बिजली उत्पादन कारखाना भी बंद हो गया, मतलब वो चालू था लेकिन भैया वहां जाते नहीं थे। पता नहीं पार्टनर्स लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था शायद, पता नहीं। बिज्जू कभी भैया से सवाल नहीं करता था, उसे लगता था भैया जो कर रहे हैं वो सही ही है। दादाजी के जाने के बाद पिताजी और बड़े भैया एक दिन विज्जू के पास आए कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों के साथ। उन्होंने विज्जू से उन कागजातों पर 8-10 जगह साइन करवाए। विज्जू को याद आया उसे नदी में तैरना सिखाया बड़े भैया ने, वो पानी में थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते और विज्जू से कहते कूद जा मैं खड़ा हूं तुझे संभाल लूंगा, और विज्जू कूद जाता। विज्जू हाथ पैर मार के उन तक पहुंचता तो वो और पीछे चले जाते, और बस यही खेल कर करके तैरना सिखा दिया भैया ने उसे। अब तो भैया कहें इस कुएं में कूद जा तो वो कूद जाए। इन कागजातों पर हस्ताक्षर कौन सी बड़ी बात थी? भैया के भावों से विज्जू को हमेशा यही लगता जैसे कह रहे हो तो चिंता मत कर मैं हूं ना।

अपनी हंसी में उनको शामिल कर ही लेगा। इतना जोर जोर से हंसता है, कहां तक बचेगी भाभी प्यारी। सबसे ज्यादा उछलना विजू को ही आया भाभी के आने का। अलग अलग पकवान, तरकारी खिलाएगी, गप्पे लड़ाएगी, ताश खेलेंगे घंटों बैठकर, और वो नदी किनारे पानी पूरी खाने जाएंगे और पता नहीं क्या क्या नाच नाच के काम किया विज्जू ने शादी में। विज्जू से बड़ी बहन की शादी, मतलब वो जो तीसरे नंबर की बहन, उसकी शादी भी साथ ही में हो गई। सहेली जैसी बहन गई तो सहेली जैसी भाभी आ गई। विज्जू अलग अलग तरीकों से बार बार बोलता, मेरी भाभी। ये बोलने में उसे बड़ा मजा आता। कारण तो नहीं पता, लेकिन बेवजह ही इस उद्बोधन को हर बात में ले आता। मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी भाभी, मेरी भाभी।

विभिन्न पत्रिकाओं में अलग अलग तरह की व्यंजन विधियां आती और विज्जू लाल आकर भाभी को देता। कभी मकई की टिक्की, कभी मखाने की खीर, कभी मेथी मटर के कोफ्ते मलाई वाली सब्जी। लेकिन एक के बाद एक भाभी ने कुछ नहीं बनाया शादी के बाद। विज्जू उनके चेहरे पर हंसी तो नहीं ला पाया, उल्टा जो एक हल्की सी वो मोनालिसा मुस्कान दिखती थी कभी, वो भी गायब हो गई। उम्र कम थी विज्जू की, लेकिन समझ में आ रहा था कि उसकी माँ और भाभी की पट्टी नहीं थी, वही वो सास बहू वाला एंगल कह सकते हैं। विज्जू का दिल टूट गया। सुख बुघाट ये भी थी कि भैया का कुछ काम जम नहीं रहा था। अब वो तेल का धंधा कर रहे थे कुछ, आसपास वाले बताते हैं कि शायद तेल का सट्टा कर रहे थे। विज्जू

के लिए ये सब कुछ समझ से परे था। आदतन कोई सवाल तो बिज्जू करता नहीं था भैया से, लेकिन कुछ शंकाएं जरूर आई उसके मन में। अब घर में चुप्पी सी रहने लगी थी, अशांति वाली चुप्पी। बिज्जू हंसमुख मिजाज का सरल लड़का रहा, यह सब कैसे भाता उसे। घर में टूटे तार बिखरे पसरे दिखने लगे, टिमटिमाती चमक लिए बिज्जू की आंखों में अब सूनापन दिखने लगा था।

0: गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे हैं श्याम माहेश्वरी की लिखी कहानी भाई हो तो ऐसा।
1: विज्जू बड़ा हो गया था, फिल्म लाइन में आने का मौका मिला तो बंबई आ गया। आज का मुंबई कल बंबई ही था। अच्छा काम जमा लिया उसने, कालचक्र का पहिया भी अजीब है।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सालों साल निकल गए इस आपाधापी में, ये शहर अब बंबई से मुंबई हो गया। कोरोना काल में स्वास्थ्य की दृष्टि से तो विजय सही सलामत रहा, लेकिन कोई पिक्चर बनाई उसने जिसमें कमर टूट गई उसकी। नौबत यहां तक आ गई कि विज्जू का घर बिक गया, और उधर गांव में सुना बड़े भैया ने बहुत पैसा जमा कर लिया था। मुंबई आने की अब जरूरत भी खत्म हो गई थी, इसलिए वे नहीं के बराबर ही आते, और आते भी तो विज्जू के घर नहीं रुकते, वो कहीं किसी होटल में रुकते थे। आजकल विज्जू को उनके हाव भाव व्यवहार से समझ आ रहा था कि उन्होंने इसलिए मुंबई आना बंद नहीं किया था कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई थी, बल्कि इसलिए बंद किया था कि भैया अब विज्जू से मिलने से कतरा रहे थे। उन्हें शायद ये डर सता रहा हो कि विज्जू इतने सालों मुंबई में रखने की कीमत न मांग बैठे। कठिन समय में अपने ही याद आते हैं, और वो अजय भैया जैसे अपने हों तो ज़्यादा याद आते हैं।

विजय अभी भी अपने तो अपने होते हैं कि भावों से निकल नहीं पाया था पूरी तरह, लेकिन भैया ने तयशुदा पूरी तरह भुला दिया था बिज्जू को। चलो उसे भुला देते तो भी ठीक था, लेकिन इस वक्त ज़रूरत में था वो। यही सोचकर मेहरबानी समझ ही मदद का हाथ बढ़ा देते उसकी तरफ, पर ऐसा हुआ नहीं। तब विजय को याद आई अपने दादाजी की ज़मीन, वही जो दादाजी ने अजय और विजय के नाम कर दी थी, और जिन कागजातों पर तब हस्ताक्षर करवाए थे विजय से, वो इसी ज़मीन को बेचने के कागजात थे। और उसी ज़मीन को बेच के भैया ने कपड़े की दुकान ली थी अपनी, जिसने आज यहाँ तक पहुँचा दिया उन्हें। सुना है कुछ लाखों में बेची वो ज़मीन आज करोड़ों की हो गई है। नंगे के नवग्रह बलवान विजय ने सोचा और तय किया कि उस ज़मीन का अपना हिस्सा भैया से अब मांग लेगा। उनके पास बहुत है ही और इसके पास सब खत्म हो गया है, तो ये सही समय है अपनी हक की गुहार लगाने का।

की बात थी, मेन बात तो यह थी कि उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से आज ये मिल्कियत खड़ी हो पाई। तर्क नहीं, कुतर्क था ये। विजय की तो सिट्टे पिट्टी गुम हो गई। इतने सालों उन पैसों को भोगने के बाद वो अपने ही हो जाते हैं। बड़ा कठिन हो जाता है उन पैसों पर से अपना मोह जाने देना। पैसों का चरित्र कुछ ऐसा ही है, नकारात्मकता बहुत जल्दी आ जाती है। रुआब और रुतबा तो बढ़ता है लेकिन घमंड और लालच भी बढ़ जाता है। पैसों के शुद्धिकरण के लिए बड़ा दान धर्म करना पड़ता है, तब पछता है पैसा। भैया छोटे भाई को उसके हक का छोड़ो उसकी ज़रूरत का नहीं दे पा रहे थे तो दान धर्म कहाँ से करते? कहाँ से चले थे अज्जू भैया, कहाँ पहुँच गए? और कहाँ से चला था रिश्ता, कहाँ पहुँच गए?

विजय ने खूब गुहार लगाई अपने नाते रिश्तेदारों के पास जाकर। अपने हक का गान बखान किया, लेकिन भैया के खिलाफ कौन खड़ा होता। समरथ को नहीं दोष गोसाई, पैसे वालों की कहां कभी कोई गलती होती है। विजय को अपना हक नहीं मिलना उतना नहीं चुभ रहा था जितना उस भरोसे का टूटना जो उसने भैया पे दिखाया था। जान लुटाता था वो बड़े भैया पे। कोई अभी भी कह दे कि ये सब झूठ है, अभी भी बड़े भैया आएंगे सांता बन के उसको सरप्राइज गिफ्ट देने, पर वो नहीं आए। विजय के इतने साल जीवन का अहम हिस्सा झूठा साबित हो गया। अब वो किसी पे भी भरोसा कैसे करेगा और दूसरों पर

0: नाड़ी।
1: आज विजय बेघर है, दिन भर बैठा रोता रहता है, रातों को सो नहीं पाता। इधर गरीबी की मार और उधर विश्वास का खंजर, शूल सी चुभन हिस्सा बन गई है जीवन का। कलयुग की ये घटना कितनों के ही साथ हुई है। संवेदनशील विजय कई तरीकों से अपने आप को संभालने का प्रयास करता रहा। प्रयास करते रहने की एक विशेषता है, मुश्किलों से जूझने के लिए हिम्मत मिलती रहती है। प्रयासों की खुराक सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दिया उसने दवाई की तरह, कहीं ज्ञान की बात सुनता तो कहीं ध्यान की कोई क्रिया करता। ऐसे ही एक ज्ञान में ये समझ आया कि पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब बचा रहा होगा बड़े भैया से, जो इस जन्म में पूरा हो रहा है। इस ज्ञान ने उसे हौसला दिया और नतीजा भी तुरंत निकला। विजय का बेटा अंधेरे में रोशनी की किरण लेकर आया, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा गया और सबसे महत्वपूर्ण, विजय के प्रति पूरा समर्पित। कलयुगी भाई गया तो सतयुगी बेटा आ गया। कुछ जाता है तो कुछ आता भी है, अभी रात है तो कल सवेरा होगा ही। जीवन के इस हिसाब किताब को समझने के बाद आज विजय शांत है। एक रिश्ते के सामने जीवन का ज्ञान पा जाना उसे भगवान का दिया उत्तम न्याय लगा। आज विजय भैया के लिए नरम हो चुका है। कल तक ये सोचने वाला विजय कि भाई हो तो ऐसा ना हो कि जगह सोच रहा है, भाई हो तो ऐसा।

भाई हो तो ऐसा ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे श्याम महेश्वरी, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज है जाने माने पार्श्व गायक भूपेंद्र सिंह की याद का दिन और आज के चित्रपट संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं चुनिंदा गाने भूपी जी की आवाज में।

हसन कमाल के बोल थे, फिल्म का नाम था एतबार, आशा भोसले और भूपिंदर की आवाजें थी। अब आहिस्ता आहिस्ता और सितारा फिल्मों के गाने।

0: भूपिंदर सिंह की आवाज थी, फिल्म का नाम था सत्या। 21 जुलाई, गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई, पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय
0: सोहा। विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक, मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

0: बचत झाली आहे। आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा। अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लोग इससे जुड़ रहे हैं और अपने अपने तरीके से अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि आज तक लोगों को लगता था कि गलतियां किसी और की है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हमारी खुद की जिम्मेदारी है जो हमें निभाना ही पड़ेगा।
3: वाह, बहुत ही जरूरी बात आपने बोली है, जो जनता की भागीदारी की बात बोली। मुझे बताइए कि ये जो फील्ड है, ये जो मुहिम है, ये आपने कब शुरू की, इसका कारण क्या था और इसकी उपलब्धियां क्या है?
2: ये कब शुरू की थी बोलूंगा तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। मेरा मेन पैशन था कि पेड़ लगाऊंगा।
3: अच्छा।
2: एंड 2010 से मैं बहुत पेड़ लगाया एंड गिनते गिनते एक बार पहुंच गए कि 80,000 पेड़ लग गए।
3: क्या,
2: 5 सालों में?
3: जी,
2: लेकिन 5 सालों में 2010 से शुरू किया था 2015 तक 80,000 पेड़, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है
3: जी।
2: कोई बोले कि वाकई यहाँ तो लोग करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं, बट उस 80,000 में से 40,000 पेड़ ऐसे ही मर गए। मैं जब गिनना शुरू किया पता चला पेड़ में, क्योंकि पानी नहीं मिला उसको, या तो कभी सूखा पड़ जाता है या ज्यादा पानी आ जाता है, पेड़ मर जा रहे हैं। अब एक पेड़ में ज्यादा पानी गिरेगा तो भी मर जाएगा, कम पानी गिरेगा तो भी मर जाएगा। तो मैंने ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं पेड़ लगाना चाहता हूं तो हमें पानी का पहले बंदोबस्त करना ही पड़ेगा।
3: जी जी।
2: चाहे एक किसान हो, जो भी हो, जो भी पेड़ रिलेटेड काम करता हो, चाहे वो एक चावल ग्रो कर रहा हो या शुगर ग्रो कर रहा हो या फल ग्रो कर रहा हो, कुछ भी, पानी बहुत जरूरी है। चाहे हम जैसे लोग, पर्यावरण प्रेमी लोग जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, आज जैसे जो बहुत इम्पॉर्टेंट कैंपेन है एक पेड़ माँ के नाम, तो तब मेरे सोच में आया कि हमें पेड़ लगाने से काम नहीं होगा, हमें पानी लगाना पड़ेगा।
3: वाह।
2: तो ट्री प्लांटेशन मत कीजिए, मैं लोगों को बोलता हूँ, आप वाटर प्लांटेशन कीजिए। आप ये सोचिए कि पानी कैसे होगा, क्योंकि बारिश के समय हर जगह हरा भरा हो जाता है अपने आप, क्योंकि पानी रहता है। वाटर इज ब्लेसिंग्स एंड हमारा ही एक पृथ्वी ऐसा जगह है जहाँ पानी है, इसलिए हम हैं यहाँ पे। आज अगर चांद पे पानी होता तो मैं गारंटी देता हूँ कि आज पर अभी समय हम लोग चांद पे बैठ के बात कर रहे होते, पृथ्वी में नहीं बैठे होते। तो पानी यही है और हमें यहीं पे पानी का संरक्षण, सबसे ज्यादा परम संरक्षण पानी का ही संरक्षण है इस समय।
3: तो ये तो तय हुआ कि आपने कैसे शुरू किया
2: जी,
3: कब शुरू किया और उपलब्धियां क्या है इसकी?
2: उपलब्धियां तो हो गई है, मेरी उपलब्धि नहीं है, लोगों की उपलब्धि है। शुरुआत 2015 से हुआ जब मैंने एक सोच निकाला कि पानी व्यर्थ बहुत जाता है।
3: जी जी।
2: चाहे शहर हो या गांव हो, हम सब नहाते हैं। एंड मौका मिला बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का, मौका मिला बहुत साइंटिस्ट से बात करने का, थैंक यू IITs एंड काफ़ी रिसर्चर्स थे। तो ये पता चला कि घरों में जो पानी होता है, किसी को बोलूं पीने का पानी को आप पेड़ में डालिए तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पीने का ही पानी नहीं है तो पेड़ को कैसे देंगे, क्योंकि यही बात अक्सर होती थी।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: तब माइंड में आया कि नहाने का पानी तो व्यर्थ जा रहा है, और घर में जितने भी पानी का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 40% पानी नहाने में चला जाता है एंड 30% पानी फ्लशिंग में चला जाता है, टॉयलेट्स में। टॉयलेट का पानी रीयूज करने के लिए बहुत मेहनत है, बहुत खर्चा है, बट नहाने का पानी एक ऐसा पानी है जिसको हम आराम से फिल्टर करके रीयूज कर सकते हैं, चाहे आपको फ्लशिंग में यूज़ करना हो या पेड़ पौधे में देना हो या टॉयलेट धोना हो या बहुत सारे, इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं नॉन ड्रिंकिंग पर्पस। तो इस चीज़ को लेकर मैंने एक जल तारा इन्वेंट किया, डिज़ाइन किया, एंड थैंक यू, उसमें एक पेटेंट भी मिला मुझे, एंड पता चला कि पेट

0: पेटेंट करना बेटर है, नहीं तो कोई दूसरा उसको कॉपी करेगा और उसका पैसा लगा देगा। तो मैंने ऐसा एक डिजाइन बनाया है कि आप कोई कॉपी नहीं कर सकता और ये फ्री फॉर ऑल है।
1: अच्छा अच्छा।
0: ये हर इंसान अपना नहाने का पानी उसमें डाइवर्ट कीजिए, उसमें फिल्टर कीजिए और तुरंत इस्तेमाल कीजिए उसको। नॉन स्टॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आप नहा रहे हैं, तो मतलब आपके पास एक्स्ट्रा पानी है। हर इंसान को एवरेज कम से कम 30 लीटर पानी चाहिए, और कोई अगर शावर से नहा रहा हो तो डबल हो जाता है, 80 लीटर से 100 लीटर पानी इस्तेमाल हो जाता है। इसलिए मैं लोगों को बताना लगा कि आप ये कार्य करना शुरू कीजिए। मैजिक ड्रम इसको इनिशियली कहते थे, फिर धीरे धीरे इसका नाम पड़ गया जल तारा, क्योंकि हम ये घर का पानी इसमें डाइवर्ट करने लगे एंड नॉन स्टॉप ये पानी इस्तेमाल करने लगे। लोगों को बहुत अच्छा लगा एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। किरण बेदी जी हैं जो बहुत ही वेल नोन फिगर हैं, तो उनको ये आइडिया अच्छा लगा था, उन्होंने देखा था। एंड कई सालों बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें जल संचय करना है, जन भागीदारी जरूरी है, जल जीवन मिशन जब शुरू हुआ, तो उन्होंने, किरण बेदी मैडम ने इस कॉन्सेप्ट को जल शक्ति मंत्रालय को ट्वीट करके बताया
1: जी।
0: ये देखिए, ये मुखर्जी हैं, ये बहुत बढ़िया एक आविष्कार किए हुए हैं, आप लोग ये लोगों तक पहुंचाइए। वो एक दिन है, और जब प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बताया, मुझे जल शक्ति मंत्रालय बुलाया गया, उन्होंने ये सिस्टम देखा, उन्होंने इस बारे में बहुत सारे पोस्टर्स, और उन्होंने चारों तरफ लोगों को बताना शुरू किया कि ऐसा करो। क्योंकि सोच यही है कि एक, अगर हम चाहते हैं कि आज अगर देखा जाए तो 150 करोड़ आबादी में मान के चलता हूँ हमारे देश का, हर इंसान को जोड़ना हो तो 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। एक है कोई भी कार्य इजी होना चाहिए, आसान होना चाहिए लोगों के लिए। दूसरा, कार्य सस्ता होना चाहिए। मैं बोलूँगा लाखों रुपए खर्चा होगा लोगों को पसंद नहीं आएगा। एंड तीसरा, क्विक होना चाहिए। मैं ऐसा कुछ काम बोलूंगा कि 2 महीना चले, काम ही चल रहा है, बढ़िया बिल्डिंग बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, कुछ ऐसा इक्विपमेंट बन रहा है, तो लोग उसमें लोग जुड़ेंगे नहीं। एंड उसी समय स्वच्छ भारत अभियान, तो लोग उससे भी एक प्रेरणा मिला कि जब करोड़ों लोग जुड़ सकते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक ऐसा काम करूंगा जिसमें हर इंसान अपने हिस्से का पानी बचाना शुरू कर दे। तो इसीलिए ये गैजेट टेक्निक बनाया गया जल तारा, जिसमें लोग जुड़ने लगे, अपने तरीके से खुद ही इसको इंस्टॉल करने लगे। एंड देखा जाए तो इसमें कोई भी खर्चा नहीं है किसी का।
1: अच्छा।
0: यही है कि जैसे मैं एक थोड़ा आलसी इंसान हूँ, मैं खुद तो काम करूँगा नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि कोई खड्डा बना दे तो कोई लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, पत्थर चुन के लाऊंगा नहीं भाई, कोई पत्थर चुन के ला दो, तो मटेरियल लेके आओ। एंड उसको इम्प्रोवाइज करते करते आज ऐसा एक डिवाइस बना दिए हैं कि आप खुद ही बना सकते हैं, नहीं तो आप किसी और से करवा लीजिए। एक अच्छा स्टैंडर्ड करना है तो 5,000 में काम हो जाता है, लेकिन जहां लाखों किसान आज हमसे जुड़े हुए हैं वो खुद ही कर रहे हैं, वो बस हमसे एडवाइस लेते हैं, मैं उनको सिखाता हूं। हमने कॉल सेंटर शुरू किया है, RWH इंडिया हेल्पलाइन, जिसमें लोग ईमेल करते हैं, उनको फोटो वीडियो के साथ इतना सारा भेज देता हूं कि आज मुझे बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इन वीडियोज़ और फोटोज़ को देख चुके हैं, सोशल मीडिया में भी बहुत जगह डाले हैं, उन लोग भी इससे देखते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं, डेली 300 से 400 लोग हमें ईमेल कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं एंड कमेंट्स कर रहे हैं, जिसको हम लोग नॉन स्टॉप गाइड कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत यूजफुल हो गया है हम सब के लिए, एंड सब लोग जुड़े हैं, यही हमारे लिए एक खुशकिस्मती की बात है।
1: जी, आपने हेल्पलाइन की बात की, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी हेल्पलाइन का नंबर या कॉन्टेक्ट का जरिया बताएं, ताकि जिन लोगों की जलतारा में दिलचस्पी है वो इस बारे में पूछताछ कर सकें और नजदीकी लोगों से जुड़ सकें। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन से आपकी इस मुहिम के साथ जुड़कर काम करना चाहे तो उसका क्या तरीका है? इन दोनों सवालों के जवाब दीजिए।
0: जी, पहला तो ये है, RWH इंडिया हेल्पलाइन जो एकदम ही फ्री सेवा है, जिसके लिए हम लोग कोई पैसा नहीं लेते। हम लोग 8 जन हैं जो जियोलॉजिस्ट हैं एंड जो सिविल इंजीनियर्स हैं, जियोलॉजिस्ट एंड सिविल इंजीनियर्स, वो भी अपने तरफ से देश का सेवा कर रहे हैं। एंड कोई भी हमें ईमेल करता है, हम लोग पहले समझते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपके भौग ज़मीन का क्या सिचुएशन है, आपका टेरेन कैसा है, आपके यहाँ पानी कितना बरसता है, आपका ज़मीन का साइज़ कितना है, छत कितना है और पानी का उपयोग कितना है, यही सब चीज़ें हम लोग उनको बोलते हैं। ईमेल कीजिए हमें, waterheroofindia@gmail.com एक मेल बनाया है, जिसमें लोग ईमेल करते हैं, उनको हम लोग रिस्पॉन्ड देते हैं हमारे इंजीनियर्स बैठ के, और उनको पूरा डिज़ाइन डायग्राम के साथ सिखा देते हैं कि आप लोग ये स्टेप कीजिए और आपका काम हो जाएगा, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा। एडिशनली अगर आपके पास फंड्स हैं, चाहे 1,000 रुपये हो, 2,000 हो,

0: 3,000 हो, क्यों हमारा कोई भी काम 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा के खर्चे का नहीं है। क्योंकि पहले ज़माने में जब भी हम जल संचय की बात करते हैं या वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, हज़ारों के लाखों में बिल जाता था। अब जब आप कोई बात बोल रहा है कि ये तो 2 लाख खर्चा होगा, मैं बोलता हूँ 2 लाख छोड़ दो, 2,000 में हो जाएगा। कोई बोलता है 3 लाख खर्चा होगा, मैं बोलता हूँ भाई 3,000 में हो जाएगा। तो लोगों को फिर ये बात समझ में आने लगी। एंड जब लोगों को कॉन्सेप्ट में क्लियर करना शुरू किया कि जल संचय का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वाटर कंजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, लोगों को क्लैरिटी, जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया एंड लोग खुद ही करना शुरू कर दिया। पहला तो ये है। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट जो हमारे पूरे देश में एक कैंपेन चल रहा है। कई ऐसे न्यूज़ आए हमारे पास, न्यूज़ ये आए कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा देती है कि आप लोग जल संचय कीजिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कीजिए, लेकिन वो पैसा यूज़ नहीं हो पाता है, वो वापस चला जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा खर्चा करने के लिए रेडी है अंडर CSR, लेकिन वो फंड यूटिलाइज नहीं हो पाता है, वो वापस चला जाता है। बहुत NGOs हैं हमारे देश में जो इस सब्जेक्ट को लेकर काम करना चाहते हैं, वो वापस चला जाता है, उन लोग कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि स्किल नहीं है लोगों में। क्या करना है ये नहीं पता। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सब जानते हैं कि हमारे पास पानी की कमी है, या दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है पानी बहुत ज्यादा है, हम लोग डूब जा रहे हैं। यही दो प्रॉब्लम है, बीच का कुछ नहीं है। और सबसे अजीब बात क्या है, वही सेम गांव में पानी की कमी होती है और सेम गांव बारिश में डूब जाता है। तो सेम जगह में आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखिए, जून महीने में यहाँ इस शहर में पानी खत्म हो चुका है, लोग टैंकर के पानी से जीवित हैं, इतने लोग अस्पताल पहुंच गए हैं, पानी नहीं है, अभी गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। और ठीक 15 दिन बाद आप 15 जुलाई में आ जाइए और आप पूछिए कि क्या हालत है, बोले कि ये सेम गांव सेम आदमी पानी में डूब चुका है, उसको एक नौका ले आके बचा रहे हैं, अभी सारा घर भी डूब गया है। मतलब पानी की कमी नहीं है, पानी का मैनेजमेंट की गड़बड़ी है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसी को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने जो RWH इंडिया हेल्पलाइन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किल डेवलपमेंट जो इंडिया का जो कैंपेन चल रहा है, इससे प्रेरणा लेके हमारी कोशिश यह है कि हर इंसान को इसके ऊपर स्किल ट्रेनिंग दिया जाए। 7,400 लोगों को हमने ऑलरेडी ट्रेन किया है, हर गांव में, हर शहर में। कोई भी सीखना चाहता हो कि जल संचय कैसे करें और जल संचय का सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जाए, ताकि एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, Class 8 भी पढ़ा हो, Class 5 भी पढ़ा हो, उसको हम लोग सिखा रहे हैं कि आप जल संचय कैसे कर सकते हैं अपने गांव में, अपने शहर में। आप लोगों को जाइए, बात कीजिए और आप खुद करके आइए। लोगों को एक तो आप सेवा तो दे ही रहे हैं, आपको कमाने का भी अवसर मिलता है। तो स्किल डेवलपमेंट का जैसे सोच है कि हम लोग ऐसे स्किल्स डेवलप करें जो हमारे देश में ज़रूरत है। अब जहाँ हमारे देश में जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो हमें लगता है, वो पानी की बचत, पानी को लेकर संचय करना, पानी का कैसे मैनेजमेंट करना, इसमें अगर स्किल डेवलपमेंट और क्लासेस हो सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने भी मुझे एक जगह दिया है PWD के हेल्प से। हेल्थ डिपार्टमेंट ने मलाड वेस्ट मुंबई में 7 एकड़ का जमीन उन्होंने अलॉट किया है, एक हॉस्पिटल प्रमाइसेस हैं। देश भर से कम 300-400 लोग हर महीने आते हैं मुझसे मिलने, जल संचय के अलग अलग विधि समझने के लिए, एंड उसी में लोग ट्रेनिंग लेके जाते हैं और अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहर में जल संचय करने का सर्विस प्रोवाइड शुरू करते हैं, जिससे बहुत बड़ा कार्य हो रहा है।
1: 7,500 लोग तकरीबन आपसे
0: 7,400 लोग
1: जी, यानी 100 कम है उसमें। क्या इसमें वो लोग भी हैं जो ऐसे इलाकों से हैं जहां बहुत कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान का इलाका है या कच्छ का इलाका है?
0: आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वही है ज्यादातर।
1: अच्छा,
0: मध्य प्रदेश, UP, थोड़ा बहुत बिहार के एरिया जहाँ फ्लड होता है, वो भी लोग आते हैं।
1: अच्छा, वो भी,
0: क्योंकि सेम ये मैं सोच लीजिए पैरासीटामोल दे रहा हूँ लोगों को। हर चीज मैं बोलता हूँ पैरासीटामोल ले लो। पानी की कमी है तो भी आपको जल संचय करना है, पानी ज्यादा है तो भी जल संचय करना है, फ्लड आया है तो भी जल संचय करना है। तो इसलिए दो बीमारी है लेकिन इलाज सेम है।
1: इलाज सेम है। हाँ। और वो इलाज, मतलब उसकी मुहिम आप तैयार करें।
0: सेंट्रल महाराष्ट्र एंड हमारे ईस्टर्न महाराष्ट्र से, राजस्थान, गुजरात एंड बड़े बड़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लोग आते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के लोग आते हैं, जिनका पानी विषय के लेके जो डिपार्टमेंट्स हैं। क्योंकि एक मैंने रियलाइज किया है कि क्योंकि मैं 22 अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहा हूँ इस समय, तो हर स्टेट का क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या जुगाड़ हो सकता है, क्या वर्कआउट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो सबका थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है।
2: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो.
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ. एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी. पेमेंट लिंक भी भेजा है.
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है. धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं.
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो. सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें.
2: समझ गया.
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं. नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं. तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात.
4: कोशिश ये रहती है, जैसे एक एक देखते पूरा मोहल्ला डूब गया पानी में. अक्सर आता, पूरा गांव डूब गया. क्यों डूबता है ये हमने रिसर्च करना शुरू किया है.
5: पानी की निकासी ठीक नहीं है.
4: हाँ, क्योंकि हम लोग पूरे पानी को एक जगह जमा होने देते हैं. अब सोच लीजिए, हमारे सामने बहुत बड़ा टेबल रखा हुआ है. ये सोच लीजिए हमारा पूरा, कहते हैं मुंबई शहर के मान लेते हैं
5: जी.
4: हर शहर में आप देख के लाइए, एक ऊपर वाला जमीन होता है, एक निचली जमीन होती है. अब बारिश तो हर जगह सेम हो रहा है. ऊपर वाले जमीन पे बारिश हुआ है, वो सीधा बह के नीचे वाला जो सबसे जो लो लाइन एरिया है वहां पहुंच जाता है. तो वहां पे वर्षा जल निकासी नहीं हो पाता है. तो जल संचय एक वो तरीका है कि हर आदमी अपना पानी अपने घर में, एक स्कूल का पानी स्कूल में, एक ऑफिस का पानी ऑफिस में, एक प्लेग्राउंड का पानी प्लेग्राउंड में, एक मंदिर का पानी मंदिर में. मतलब हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स. ये उससे मैंने प्रेरणा लिया है.
5: मतलब हर जगह अगर पानी का इस तरह से संचय होगा तो जल भराव नहीं होगा,
4: बस,
5: और बाढ़ की समस्या नहीं होगी,
4: बस. और वो जमीन में जाएगा जो हमें काम आएगा
5: जी,
4: क्योंकि बहता हुआ पानी नदी में चला जाता है, समुन्द्र में चला जाता है. एंड बहुत बड़ी बात सोच ये है सर, मैं आप जो सुन रहे हैं आप समझिए. पहले हमें लगता था कि हम बहुत बड़े तालाब में पानी इकट्ठा करेंगे. हम लोग तालाब का पानी पीते थे, वो सूखने लग गया. क्यों? क्योंकि धूप बहुत तेज होता है. फिर हमने कुआं खोदा, लोग इतने हो गए कि कुआं सूखने लग गया. 50 फीट 100 फीट तक हम लोग कुआं खोदे हैं. उसके बाद हमने बोरवेल खोदा. बोरवेल हम लोग 200 300 400, कहीं कहीं तो मेरे पास फोन आता है 1800 2000 फीट नीचे तक बोरवेल से पाइप निकाल रहे हैं, बोर जो कहते हैं. अब वो भी सूखने लग गया. 70% से ज्यादा बोरवेल सूख चुका है. लेकिन हमें लगता था कि जाने दो बोरवेल को, जाने दो कुआं को, हम लोग तालाब बनाएंगे, हम लोग बांध बनाएंगे, हम लोग नदियों को रोकेंगे. वो अपने जगह ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से इवेपोरेशन रेट बढ़ गया है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, भापीकरण, वाष्पीकरण. वाष्पीकरण के जब ये कॉन्सेप्ट देखा गया था, मुंबई मॉडल अक्सर बात किया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट में, देखिए मुंबई मॉडल कितना कमाल है. इन्होंने बड़े बड़े तालाब बनाए हैं, तालाब में पानी कलेक्ट करते हैं और हम लोग पूरा साल भर उसको इस्तेमाल करते हैं. तो ये चीज लोग भूल गए थे कि वाष्पीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आज के समय इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27% वाष्पीकरण हो रहा है इस समय. तो ये वाष्पीकरण 2035 का एक प्रोग्राम इंडिया गवर्नमेंट लेके चल रही है कि उस समय जो सिचुएशन होगा हमें 10 साल पहले लगना पड़ेगा.
5: एक तिहाई पानी भाप बन के उड़ जा रहा है
4: जी. इस समय मुंबई में जो पानी की संकट है, पुणे में पानी की संकट है, चेन्नई में पानी की जो संकट है, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन रेट, वाष्पीकरण.
5: गर्मी बढ़ गई है.
4: गर्मी बढ़ गई है. हमें लगता था, पहले लगता था 12%

0: पानी उड़ेगा
1: जी,
0: अभी 23
1: से ऊपर हो गया।
0: बिल्कुल, यही हमारा प्रॉब्लम है। इसलिए अब तालाब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, हमें पानी जमीन के अंदर पहुंचाना बहुत जरूरी है। जल संचय का तालाब भी एक तरीका है, लेकिन जल संचय तालाब का पानी उड़ जा रहा है, पानी जो जमीन के अंदर जाएगा वो कभी एवेपोरेट नहीं होता, आप 100 साल बाद भी निकाल सकते हैं।
1: इसमें बॉटम लाइन ये है कि पानी का ये संचय हम सबको करना होगा। जो पानी की कमी का शोर मचाते हैं, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो पानी को वेस्ट करते हैं, सोसाइटीज, अस्पतालें, उसके अलावा तमाम बंगलोज, ऑफिसेज, प्रार्थना स्थल, हर एक जगह पर लोगों की जिम्मेदारी है कि वो पानी बचाएं, वरना आने वाले कल में दिक्कत होने वाली।
0: ये हर इंसान को अपने हिस्से का पानी, इसको मैं थोड़ा, आप जो बोल रहे हैं इसमें बस एक शब्द जोड़ दिया हूँ,
1: जरूर
0: अपने हिस्से का पानी बचाइए बस। yes. दूसरे का मत सोचिए, अपना कर लीजिए तो अपने आप हो जाएगा सब।
1: तो सब अपने अपने हिस्से का पानी बचाएं तो ये सारी मुहिम जुड़ के एक बड़ा बदलाव ले।
0: बिल्कुल, इसलिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जल संचय जन भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: हम लोग क्या लगता है हर दूसरा आदमी करेगा, म्यूनिसिपलिटी काम करेगी, कलेक्टर साहब काम करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब का काम है, हमारा काम नहीं है, डीएम मैडम का काम है, ऐसा नहीं होता है। हम सबका, हमारा पानी हमारा घर, हमारा पानी हमारा स्कूल, हमारा पानी होता है जो भगवान ने हमें दिया है, इस जगह के लिए दिया है,
1: हमें बचाना है। तो चलते चलते अपने कॉल सेंटर का नंबर और वो ईमेल आईडी दोबारा बता दीजिए, और ये कि कैसे लोग खुद को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल भी इससे जुड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत पेचीदा काम नहीं है।
0: बिल्कुल, 2-3 घंटा मेहनत करना पड़ता है। किसी को भी इस बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए हो तो waterheroofindia@gmail.com पे मेल कीजिए, आपको इसमें ऑटोमेटेड रिस्पांस मिलेगा, नंबर्स मिलेंगे, उसको पढ़ लीजिए, फिर हमें फ़ोन कीजिए, हम आपको और भी इसमें डिटेल दे देंगे। एंड प्लस मैं दोबारा बोलूँगा, हमारा जो स्किल डेवलपमेंट कैंपेन चल रहा है पूरे देश में, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी इसको आप देख सकते हैं, आप खुद सीखिए, अपने गांव में, अपने शहर में ये सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कीजिए, ताकि जिस हिसाब से 7,400 लोग इससे जुड़े हैं, और भी लोग इससे जुड़ जाएं और अपना घर भी इसमें चला पाएं। थैंक यू
1: सुभजीत जी, ये जो मैटिनी शो के तहत आपसे बातें हुई हैं, अभी मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें बाकी हैं, पर इस हफ्ते के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। लेकिन इजाजत लेने से पहले हम चाहते हैं कि अपनी पसंद का एक गाना, बल्कि कहें कि अपनी पसंद के एक गाने की आप फरमाइश करें, हम उसको पूरा करेंगे।
0: एक गाना मुझे हमेशा बहुत प्यारा लगता है जो नेचर से रिलेटेड है
1: जी,
0: एंड मेरी मम्मी भी वो गाती थी, अभी उनका फेवरेट था, अभी तो वो नहीं है, बट मुझे भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा गा दूं आपके
1: जरूर,
0: सामने
1: जरूर, जरूर। स्वागत।
0: हरी हरी व सुंदरा पे नीला नीला ये गगन,
1: वाह वाह,
0: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तो बस ये गाना सुना दीजिए, बहुत दिन हो गए सुने हुए।
1: क्या बात है, बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज, भरत व्यास के बोल और सतीश भाटिया का संगीत।
0: अरे वाह,
1: सुनते हैं ये गाना।

0: बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और आगे की बातें करेंगे।
1: थैंक यू जी।
0: चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर मिल रहे हैं मैटिनी शो में और बातें करेंगे जल है तो कल है की। इक्कीस जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है। और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। यादों की महफिल कार्यक्रम होगा कुछ ही पलों के बाद।
1: एयरोस्पेस ने बनाया है विक्रम एक का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के

0: मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये 4 चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाज सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाईस्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। अगले कार्यक्रम के लिए कुछ पलों का इंतजार। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप।

0: मेरा रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अमर प्रेम फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। दिन की इस भागदौड़ में दिन की 12:11 विविध भारती यादों की महफिल।
1: मस्ताना प्यार मेरा दीवाना।

साधना फिल्म का गाना था और अब द ट्रेन फिल्म का गीत आनंद बख्शी राहुल देव बर्मन। मोहम्मद रफी की आवाज़।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: खामोशी फिल्म का ये गीत गुलजार के बोल थे हेमंत कुमार की तर्ज थी।
1: आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक।

0: सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

नमक राम फिल्म का गाना आपने सुना। फिल्म का नाम है धड़कन, किशोर कुमार की आवाज।

अजनबी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने सुना आनंद बख्शी की बोल थी, आर डी बर्मन की तर्ज थी, राजेश खन्ना की याद, यादों की महफिल।

वही पड़ोसन फिल्म का ये गाना एकदम जैसे ही खत्म हुआ ये लगा कि अरे ये गाना तो खत्म हो गया। और अब देखिए कि बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो लगातार विविध भारती के फेसबुक पेज पर अपनी बात लिख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में। वो इस कार्यक्रम के साझीदार बनना चाहते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं। तो सायरा बनो सुनील दत्त, ये एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही शानदार आगाज हुआ है। एक श्रोता का कहना है कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि वक्त पर बोल नहीं पाती, पर बाद में पछतावा होता है कि ऐसा बोल देती या कह देती। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि लाइफ में कई बार ना कहना कितना मुश्किल होता है, तो मैंने भी नहीं कहा। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि हमारी सगाई के कुछ महीनों बाद पारिवारिक फंक्शन में मेरी होने वाली धर्मपत्नी से अलग से मिलना हुआ था अजमेर शहर में। पहले मैंने सोचा कि मैं ये कहूँगा वो कहूँगा, पर कुछ ना कहकर बस मैंने यही कहा, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। और वो ये बात सुनकर मुस्कुराई थी। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही दिलचस्प है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा, कह दिया हाले दिल तो एक सुकून पा लिया, खामोशी का वो भारी बोझ दिल से हटा लिया। क्या बात है, क्या हाले दिल कह पाए, अपनी बात कह पाए, या बस दिल की दिल में ही रह गई। किस गीतकार का है ये गाना, यही है आपको बताना। और साथ में ये भी कि आपने कब किसको प्रेम पत्र लिखा था। ये जो लव लेटर लिखने की बात है, जरा आज इस राज को खोल ही दीजिए।

संगम फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के रिस्पॉन्सेज आए हैं हमारे सवाल के जवाब में। एक श्रोता लिखते हैं कि सगाई के बाद अपने होने वाले पति को प्रेम पत्र लिखा था, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था जवाब भी आया करता था और ये ख़त हमने पिछले 28 साल से संभाल कर रखे हैं। एक और श्रोता कहते हैं, ज़िंदगी में हर रोज़ न जाने कितनी बातें हम किसी से कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। और आगे वो लिखते हैं कि जैसे भोलेनाथ ने विष को गले में रख लिया था, वैसे ही कई बातें हम विष समझकर पी लेते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हमने किसी को लव लेटर लिखा, लेकिन कुछ मित्रों को ज़रूर लव लेटर लिख के देते थे जो हम नहीं लिख सकते थे, उनके जज्बात हम अपनी कलम से लिखते थे। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि पुराने पन्ने पलटवा रहे हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आज आप सोच कर आए हैं कि हर किसी के छिपे हुए राज निकलवाएंगे। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि कहना तो चाहते थे कहा भी, पर लोगों ने सुनी और फिर हमें ऐसा छोड़ा कि जैसे हम कुछ नहीं थे। ये एक श्रोता अपना दुख शेयर कर रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि लव लेटर लिखा नहीं था, किसी का मिला था, वो भी सांकेतिक भाषा में, क्योंकि वो ज़माना ही ऐसा था। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं।

ट्यूशन पढ़ते समय उसकी हया भरी नजरें संग मुस्कान को जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई, ये 50 साल पुराना वाकया है। ये एक श्रोता है, उन्होंने कहा। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं, शादी के बाद जब मायके जाती तब ये सोचती मम्मी पापा से ये कहूँगी वो कहूँगी, पर जब मिलती थी तब न जाने उनकी बातें सुनने में ऐसी रम जाती थी कि बहुत सी बातें बाद में याद आती थी कि ये कहना था वो कहना था, पर कई बातें कुछ कभी बोल नहीं पाई, पापा नहीं हैं पर कह नहीं पाई बातें। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कॉलेज लाइफ में जिससे जो कहना था कह नहीं पाए और वो दूर चली गई। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रेम पत्र की बात चली है तो बता देता हूं कि बिफोर मैरिज मैंने भी बहुत सारे प्रेम पत्र लिखे, एक ही को ये ज़रा क्लियर कीजिएगा, अभी संभाले हुए हैं, कोई रविवार की मस्तानी शाम को फिर से पढ़ लेते हैं। ये एक श्रोता की बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है, लिखते हैं कि जो दुनिया से चले गए उनसे बहुत कुछ कहना था। और इसके अलावा और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कहना बहुत कुछ था पर कह नहीं पाए, फिर देर हो गई, कुछ शर्म और कुछ डर रहा। ये तमाम श्रोताओं की बातें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गाना सुनते हैं, ये आपको बताना है फिल्म का नाम। प्रेम पत्र की बात हुई तो कई लोगों ने जवाब दिए, अब जरा ये बताइएगा कि नॉर्मल चिट्ठी पिछली बार कब और किसको लिखी थी आपने।

अब श्रीमती जी जब भी मायके जाती थीं तो लिख दिया करते थे, फिर मोबाइल आने पर यह सिलसिला भी खत्म हो गया। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अब चिट्ठी पत्री का जमाना चला गया है और संदेश बॉक्स के साथ सांकेतिक इमोजी से ही लोग काम चला लेते हैं, और जो समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो उनकी भला से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात एक श्रोता ने लिखी है। एक और श्रोता है लिखते हैं कि चिट्ठी एक बार भी नहीं लिखी लेकिन पोस्ट ऑफिस से पार्सल बहुत सारे पोस्ट किए हैं रिसेंटली। एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि नॉर्मल चिट्ठी लिखे, पिछली बार कब लिखी थी ये तो याद नहीं है, पर पिताजी का लिखा हुआ 1978 का अंतर्देशी मिला, आज पिताजी नहीं है पर ये पत्र मैंने संभाल कर लिखा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उन्होंने आखिरी पत्र जो है वो विविध भारती को लिखा था, बहुत बढ़िया बात। एक और श्रोता ने आखिरी पत्र जो है वो विविध भारती में लिखा था और उनकी इल्तिजा ये है कि मनचाही गीत कार्यक्रम में शामिल किया जाए। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि आजकल ज़माना बदल गया, आज के माँ बाप तो बच्चों की सुन लेते हैं, हमारे ज़माने के माँ बाप कुछ कहते सुनते नहीं थे, उससे पहले उनके हाथ बोलने लगते थे और हम कुछ बोल नहीं पाते थे। कुछ दिल ने कहा ये गाना बहुत सारे श्रोताओं के दिल तक उतरा है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अपने साथी को पहला खत लिखा जो पोस्ट नहीं किया, किसी के द्वारा भिजवाया। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट से एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा एक दोस्त उड़िया था, उसे एक हिंदी भाषी लड़की से प्यार हो गया था, वो मुझसे हिंदी में प्रेम पत्र लिखवाता था, वही पहला प्रेम पत्र था। भाई देखिए, वाया वाया प्रेम पत्र यानी किसी और के लिए लिखे गए प्रेम पत्र की बात है, ये भी बहुत ही दिलचस्प बात है। कुछ और कमेंट्स अगले गाने के बाद शामिल किए जाएंगे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आई थी वो इमोजी की और डिजिटल संवादों की थी, तो यहाँ बताइएगा कि क्या चिट्ठी पत्री की जगह जो व्हाट्सएप और डिजिटल संवाद ने ले ली है या जो इमोजी के जरिए संचार है, इमोजी के जरिए अपनी बात कहना है, इसके बारे में आपका क्या राय, आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, क्या इमोजी सचमुच में आपके जज्बात को सामने वाले तक पहुंचा देते हैं या ये शॉर्टकट तरीका आपको पसंद नहीं। दूसरा, व्हाट्सएप संवादों से ज्यादा आनंद चिट्ठी में आता था या नहीं।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

अदालत फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, और एक श्रोता ने इसकी एक पंक्ति को कोट किया है, कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, अब इस पे कयामत है कि हम कुछ नहीं कहते। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आज आपने यादों का पिटारा खोल रखा है जिसमें चिट्ठियों भरा प्यार है, कुछ प्रेम की बातें हैं, कुछ पुराने जज्बात हैं जो हमें सदा जवां रखते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा कि मैंने तो कभी पत्र नहीं लिखा, लेकिन मेरे बड़े पापा हैं वो वायलिन वादक हैं और उन्होंने लता मंगेशकर जी को एक पत्र लिखा था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रंग बिरंगी इमोजी बहुत सुंदर दिखती हैं और वो आपके संदेशों को अट्रैक्टिव बनाती हैं, तो भाई एक पहलू ये भी है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक वक्त था जब लोगों के पास समय बहुत था और भावनाएं अपरंपार थी, चिट्ठियां पोल भी खोलती हैं, अगर किसी की चिट्ठी किसी दूसरे के हाथ पड़ जाए या कोई पुरानी चिट्ठी किसी के हाथ लग जाए तो आपसी संबंध तक खराब हो सकते हैं, ये एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भागदौड़ आपाधापी में किसी के पास समय नहीं है कि वो बैठकर चिट्ठियां पढ़े, इसीलिए सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इमोजी का सहारा लिया जा रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि एक जमाना था जब डाकिया घर पर आता था तो खुशी की लहर दौड़ जाती थी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के समय में अजीब लगेगा लेकिन मैं अभी भी दीपावली, न्यू ईयर, ईद और क्रिसमस के ग्रीटिंग कार्ड्स एनवेलप पोस्ट से स्टैंप लगाकर भेजता हूं और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। कितनी प्यारी बात है, ये पुरानी परंपरा को आपने आज तक कायम रखा हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और तमाम श्रोता जब सुनेंगे तो जाहिर है कि उन्हें भी इससे प्रेरणा मिलेगी। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक जमाना था जब आई लव यू कहने से पहले लोग खत लिखते थे, उस खत में जल्दीबाजी नहीं होती थी, इंतजार, अपनापन और ढेर सारे एहसास होते थे। ये हमारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, तमाम कमेंट्स को शामिल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुख्य मुख्य कमेंट्स को मैं शामिल करता चला जा रहा हूं और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता जा रहा हूं। अब जरा सोचिए कि दिल की बात कहने की जो झिझक है उसे साहिर लुधियानवी ने इस गाने में किस तरह से पिरोया है। फिल्म का नाम आप बताइएगा और साथ में ये कि क्या कभी आपको भी ऐसा लगा कि आज मुझे कुछ कहना है और फिर लगा छोड़ो अब क्या कहना है, यानी आप संकोच संकोच में रह गए।

कितना प्यारा गाना है और कितना सही एक श्रोता ने लिखा है कि किशोरदा का ये गाना जितनी बार सुनो वही किशोरदा के साथ सुधा मल्होत्रा का नाम भी लिखना चाहिए। किशोरदा और सुधा मल्होत्रा का ये गाना जितनी बार सुनो दिल नहीं भरता है। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे कुछ कहना था पर सोचते सोचते कई बरस लग गए और वो किसी और की हो गई। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि इस गाने के संगीतकार हेमंत कुमार हैं। और एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि क्या ये फिल्म कहीं देखने मिल सकती है, अब ये तो खोज कर बताना पड़ेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पढ़ाई के दौरान जब अपने किसी खास दोस्त से कुछ बात कहने का दिल में उमड़ घुमड़ होता था, भाई इन्हीं के शब्द हैं कि आज दिल की बात जरूर कहेंगे लेकिन ऐन वक्त पर मन कहता चलो कभी दूसरी बार, मेरे साथ ऐसा ही होता रहा है। ये एक श्रोता की बात। और इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स धड़ाधड़, ये जो मोबाइल की कंप्यूटर की स्क्रीन है ये स्क्रॉल होती चली जा रही है। श्रोता लिख रहे हैं कि हमने कई लोगों के खत भी पढ़कर सुनाए और कुछ लोगों को खत भी लिखे और उन्हें समझाया भी और बातें सुनकर रोए भी वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मैं बचपन से विविध भारती सुनती हूँ, मेरी माँ और मेरी दोनों बहनें विविध भारती की फैन हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछ ही लिया है तो आज बता देते हैं, 40 साल पहले की बात है, मेरी दुकान पोस्ट ऑफिस के सामने थी, आज भी है, ससुराल से श्रीमती जी का पत्र आता था, पोस्टमैन मुझे इशारा कर बुलाकर दे देते थे क्योंकि पिताजी जब सामने बैठे होते थे तो शर्माती थी। ठीक है भाई, ये एक बात का खुलासा हुआ। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिनकी बात, एक श्रोता ये लिखते हैं कि विविध भारती ने अभी मौका दिया है कि हम चिट्ठियों के जरिए अपनी फरमाइशें भेजें तो हम भेज रहे हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि इमोजी के जरिए हम तो अपनी

नहीं बता पाते, पर हाँ बच्चे जरूर जानते हैं कौन सी इमोजी किस तरह की है और बताते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई इमोजी भेजनी और कोई गड़बड़ इमोजी आपने भेज दी हो क्योंकि आपको उसका मतलब ही नहीं पता हो, और उसके बाद किसी ने आपको आपकी गलती का एहसास दिलाया और उसके बाद आप बहुत हंसे हो? ये किस फिल्म का गाना है ये आपको बताना है। और तब तक ये जो डिजिटल संदेश है ना, इनमें कई बार ये होता है कि किसी को भेजा जाने वाला संदेश किसी और को भेज दिया जाए। इस तरह का गड़बड़झाला भी आपने किया है तो बताइए।

0: पूछो ना यार क्या हुआ।
1: जमाने को दिखाना है फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के इतने सारे कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता ये लिखते हैं कि एक बार चश्मा लगाया नहीं था तो पता नहीं चला, कुछ का कुछ इमोजी बीच गया, बाद में समझ में आया। भाई ये चश्मा लगाना कितना ज़रूरी है ये इस कमेंट के ज़रिए पता चल गया। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कभी कुछ का कुछ बिक जाता है तो गिल्टी फील होता है। और इसके अलावा एक और श्रोता, उन्होंने भी बिल्कुल यही बात लिखी है। और तो बहुत सारे श्रोताओं ने ये कहा है कि भाई आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और बहुत सारी बातें कहने का मौका आप सभी ने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। फिर मिलेंगे, सुनते रहिए विविध भारती, क्योंकि विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। और दिन की इस भागदौड़ में आपको जहां कहीं भी रहना है विविध भारती के संग रहना है।

सिलसिला ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो किसी न किसी सिलसिले का हिस्सा होता है। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंतिम पहर तक हर पल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रिश्तों का सिलसिला, सपनों का सिलसिला, संघर्षों का सिलसिला और सफलताओं का सिलसिला यही जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि प्रकृति भी एक अनवरत सिलसिले पर ही आधारित है। ऋतुओं का बदलना, नदियों का बहना, समय का आगे बढ़ना हमें यही सिखाता है कि रुकना जीवन का स्वभाव नहीं है। जीवन तब तक सुंदर है जब तक उसके भीतर आगे बढ़ने का सिलसिला बना रहता है।

जीवन के इस सफर में कई बार कुछ सिलसिले अचानक टूटते हुए प्रतीत होते हैं। कोई अपना दूर चला जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, या परिस्थितियां हमारी उम्मीदों के विपरीत हो जाती हैं। ऐसे क्षणों में लगता है कि सब कुछ थम गया है, लेकिन वास्तव में जीवन कभी रुकता नहीं। एक अध्याय समाप्त होता है तो दूसरा प्रारंभ हो जाता है। यही समय का नियम है और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई भी। टूटे हुए सिलसिलों की राख से ही नए अवसर जन्म लेते हैं। इसलिए कठिन परिस्थितियां हमें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि एक नए सिलसिले की शुरुआत करने के लिए आती हैं। जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं, वे हर अंत में एक नई शुरुआत खोज लेते हैं।

मानव सभ्यता का इतिहास भी एक लंबे और प्रेरणादायक सिलसिले की कहानी है। पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन ज्ञान, संस्कार, संस्कृति और अनुभवों का प्रवाह लगातार आगे बढ़ता रहा। आज हम जो कुछ हैं, वो उन अनगिनत लोगों के प्रयासों का परिणाम है जिन्होंने अपने समय में कुछ अच्छा करने का सिलसिला जारी रखा। यही कारण है कि हमें भी अपने कर्मों, अपने मूल्यों और अपने सकारात्मक विचारों का सिलसिला बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे प्रयास भविष्य की किसी बड़ी कहानी का आधार बन सकते हैं। अंततः जीवन का सार यही है कि हम उम्मीद, प्रेम और मानवता का सिलसिला कभी टूटने ना दें। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, तब तक जीवन में अर्थ, ऊर्जा और आनंद बना रहेगा।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
4: होठों पे सच्चाई रहती है,
0: तो सुनना ना भूलिए 21 और 22 जुलाई को शाम 4 बजे। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सुनिए समाचार दिल्ली से।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
6: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में

0: पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम, बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
3: Congratulations in space for facilitating
4: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
3: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
1: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
5: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
1: ये समाचार हमारे newsonair ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
6: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
6: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का ही एक शानदार नमूना था।

0: करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
1: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
2: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:00

0: 30 मिनट पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दीं। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: पर आप विविध भारती के संग हैं। सदाबहार नगमे।

रही फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। आज है जानी मानी गायिका मुबारक बेगम की याद का दिन।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
1: देवदास फिल्म का गीत मुबारक बेगम की आवाज, गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत सचिन देव बर्मन का।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं मनचाही गीत कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में श्रोता हमें लिखते हैं तमाम देशभर से चिट्ठियां, और इन चिट्ठियों के जरिए हम ये जान पाते हैं कि कहां कहां श्रोता हमें सुन रहे हैं और कौन कौन से गानों की फरमाइश करना चाहते हैं। ये पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता की चिट्ठी, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती जासमीन और प्रयागराज, पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्रकांत, प्रीति और छाया, छत्तीसगढ़ बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी। और इसके अलावा ये फरमाइश जालना से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अशोक भूतेकर, गणेश और कार्तिक भूतेकर। बहुत ही सुंदर लेखनी में श्रोताओं की ये चिट्ठियां। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, शर्मीली फिल्म का गीत नीरज के बोल।

मुजाहिद कार्यक्रम की अगली पेशकश जो है वो उसकी फरमाइश आप सभी ने भेजी है। बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, राजाराम नगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, सलोजी महाजन और चीकू, ये चिट्ठी आई है खोखरिया बनाड रोड सूर्य नगरी जोधपुर से।

जबर सिंह फूल वाले रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा देवेंद्र सिंह की और राजेश जैन अरुणा जैन दीपक जैन गौतम बिट्टू मट्टू सारिका बनिता मनोज जैन और समता जैन ने हमें लुधियाना के मोहलापुर दंबा मंडी से चिट्ठी लिखी है। वारंगा फाटा से वैष्णवी मोरे अश्विन मोरे कुंडलीक और पांडुरंग मोरे की चिट्ठी है और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा बिमला अनेजा की चिट्ठी। सितमगर फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और कीजिएगा सितमगर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल आरडी बर्मन की तर्ज़।

और अब कार्यक्रम का अगला गाना जो धरती फिल्म से है। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सुकोडा रोडा गोला से गजानन कुंभार, पद्मावती, विशाल, ज्योति और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा बड़वाहा से अयांश रावल, पुष्पेंद्र और इंदिरा रावल, चांदूर बिस्वा से राम भाऊ, लक्ष्मण भाऊ, भारत, शत्रुघ्न नारायण, पंच गवहाण तेलहारा से साहेब राव, अमोल खालिक और इनके साथी, शेगांव से मोहम्मद अनीस मुहाल, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद रिजवान। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें। हस्तर जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन की तर्ज है।

0: इसी के साथ अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम खत्म होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हेलो हेलो नानी।
1: हाँ गुड़िया।
0: अरे हाँ हाँ, मैं गुड़िया ही बोल रही हूँ, मुझे पता था आपका फोन आएगा।
1: हाँ अच्छा अच्छा, जल्दी बता वो आया कि नहीं।
0: अरे रुकिए, मैं खिड़की के पास ही जा रही हूँ, खिड़की तो खोलने दीजिए। हाँ अब बोलिए नानी, आपकी टाइम की सेंस बड़ी परफेक्ट है।
1: नानी किसकी हूँ,
0: आपका फोन आया, मैंने खिड़की खोली और मैं नीचे देख रही हूँ कि भूरे भी अपने ठिकाने पहुँच गया है।
1: अरे गुड़िया तो खिड़की पर आ भी गई, फिर भी सामने वाले फ्लाईओवर का शोर नहीं सुनाई दे रहा।
0: ओ फोन नानी, आप भूल गई लगता है, लॉकडाउन चल रहा है भाई, पूरा सन्नाटा पसरा है, शोर कैसे आएगा।
1: अरे बेटा मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि भूरे का डिनर हुआ कि नहीं।
0: आप भी ना नानी, डिनर तो हम करेंगे थोड़ी देर में। उफ, ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, वैसे आप ठीक ही कह रही हैं, भूरे भी तो डिनर ही करेगा ना रात में, अब भले दूध भात खाए या रोटी।
1: आज क्या मिल रहा है उसे, क्या लाया बेरा, दूध भात कि ब्रेड।
0: आप उसे बेरा क्यों कह रही हैं, अरे वो तो उजला फरिश्ता है, रोज शाम अपने साथ भूरे के लिए पानी और खाना लाता है।
1: देखो गुड़िया, खाना जो बनाए वो खानसामा और जो खाना परोसे वो बेरा ही हुआ ना। अच्छा ये बता तो उसे उजला फरिश्ता क्यों कह रही है।
0: अरे नानी वो इसलिए कि या तो वो व्हाइट टी शर्ट पहन के आता है या उसकी टी शर्ट में थोड़ा बहुत व्हाइट कलर होता जरूर है, और काम काम तो वो एंजल जैसा ही करता है, तो हुआ ना उजला फरिश्ता।
1: बड़ी खोज खबर रखती है रे तू उसकी है।
0: हाँ और पता है दादी क्या कहती है, वो कपड़े उजले पहनता है, उसका मन भी उजला है, तभी तो हर रोज भूरे के लिए खाना लेकर आता है। पता है नानी, बारिश हो तो भी आता है, और दादी ने ही उसे ये नाम दिया है उजला फरिश्ता, इनोसेंट एनिमल्स की हेल्प करने वाला एक एंजल।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बातों की दादी, अब ये बता आया कि नहीं तेरा उजला फरिश्ता।
0: अभी तक तो नहीं आया नानी, पता है नीचे भूरे भी इंतजार में बैठा है।
2: अरे गुड़िया बेटा, गुड़िया आ जाओ बेटा, तुम लोग सब लोग खाना खाने के लिए तैयार हो गया, खाना टाइम हो गया।
0: ओके ओके मम्मा।

0: अच्छा नानी, नीचे भूरा खाने की वेट कर रहा है और यहाँ हमारे डिनर की भी कॉल आ गई, तो आपको बाकी रिपोर्टिंग में खाना खाने के बाद दूंगी। ओके बाय।
1: बाय बेटा।
2: आ जाओ सब लोग, आगे सब लोग।
0: वाओ रायता, माय फेवरेट। मम्मी, और ये इतने बड़े डोंगे में आपने क्या ढक के रखा है? मैं देख लूं खोल के?
2: हाँ हाँ, देखो देखो।
0: उफ, ये क्या, ये तो चावल दिख रहे हैं
2: जी,
0: और कैरेट, कैप्सिकम भी, ओ नो, बीट रूट, और वो भी इतने चिपके चिपके से। मम्मी, ये बिरयानी है या खिचड़ी? वो भी बीट रूट वाली, या कौन खाएगा?
2: गुड़िया, लॉकडाउन में खाना मिल रहा है, शुक्र मनाओ।
3: वाह, ये चावल तो मेरे हिसाब से बने हैं, चबाने की जरूरत नहीं है।
4: लाइए भाई, हम भी तो चखले थोड़ा सा।
0: मम्मी, आप कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी?
2: जिसने बनाया है ना, उन्हीं से पूछो तुम।
0: ओ नो, दैट मींस आज कुकिंग फिर पापा ने की है?
2: यस।
3: जिससे जो आता है वही तो करेगा। तेरे बाप से झाड़ू पोछा नहीं लगता, न ये कपड़े धो पाता है, न बर्तन। अब तेरी माँ भला कितना खटेगी? बेचारा खाना बना देता है, वरना मर्दों को सिर्फ हुक्म देने की आदत होती है। हाँ
4: अम्मा, एक तुम ही हो मेरी पार्टी में बस। हाँ। ये गुड़िया तो विरोधी पार्टी में चली गई लगती है, इससे तो सिर्फ गलतियाँ निकालना आता है।
0: क्या पापा?
2: अरे, आप बस करिए ना गुड़िया बेटा, लाओ मैं तुम्हारे लिए पराठा बना लेती हूँ, आज बेटा।
4: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, विरोधियों और असंतुष्टों को अपनी तरफ करने का अच्छा पैंतरा है।
2: जी हाँ, वो तो है।
4: खाओ खाओ, पराठे खाओ, वजन बढ़ाओ, हमें क्या है। बाद में मत कहने की पापा सूर्य नमस्कार नहीं हो रहा है।
2: तो आगे शुरू, बस करिए। हाँ, नहीं तो एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होता।
4: अच्छा, सच में?
2: हाँ।
4: तो एक हमारे लिए भी बना दो।
2: अम्मा अम्मा, देख लीजिए, अब आप देख रही है ना।
3: हाँ।
2: अपने लाडले से अपना खुद का बनाया खाया नहीं जा रहा है खाना, और आप उन्हीं की साइड ले रही
3: हैं। अरे बहू, हम सब एक ही साइड में है, तू फिकर मत कर। अरे गुड़िया, ए गुड़िया, तू ये बता, तेरी नानी क्या कह रही थी रे?
0: अरे दादी, पता है उनको भूरे की इतनी फिकर होती है, इतनी फिकर होती है ना, कि रोज शाम को जब तक उसके खाने की पूरी रिपोर्ट नहीं ले लेती, उन्हें चैन ही नहीं पड़ता।
3: अच्छा, तो तू उन्हें पूरी खबर देते है?
0: और नहीं तो क्या, भूरे की स्टोरी है ही इतनी वंडरफुल।
3: अच्छा, कैसे? लेकिन
0: आपको पता तो है सारी कहानी नानी।
3: अरे पर मैं भूल जाती हूँ ना रे, तू अपने नानी को जैसे प्यार से सुनाती है ना, वैसे ही जरा प्यार से मुझे भी सुनाना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है रे।
0: अच्छा तो सुनिए, वो हमारी लाइफ में मेरे कमरे की खिड़की से आया।
3: है? खिड़की से आया? कमरे की खिड़की से? अरे हम 12वीं मंजिल पर रहते हैं, खिड़की से कैसे भला आया?
0: ओहो दादी, आपको कहानी सुननी है ना?
3: हाँ हाँ, सुना सुना सुना।
0: हाँ, तो खिड़की के नीचे, ठीक नीचे वो जो फ्लाईओवर है ना,
3: हाँ,
0: वहाँ वो रोज शाम को आता है। दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, रात को कहाँ सोता है ये भी नहीं पता।
3: अरे तो तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की?
0: ओहो दादी, लॉकडाउन में नीचे उतरना अलाउड नहीं है, तो फाइंड आउट कैसे करूंगी? हम तो बस खिड़की से ही देखकर खुश हो लेते हैं।
3: अरे इसमें खुश होने की क्या बात है?
2: अम्मा, अम्मा आपको कहानी सुनना है ना, तो बस सुनिए जो कह रही है गुड़िया।
3: हाँ हम तो सुन ही रहे हैं बहू, सुन रहे हैं।
0: हाँ, तो शाम को जब डॉगी फ्लाई ओवर पर पहुँच जाता है ना, तो थोड़ी देर में एक पर्सन आता है, वही आपका उजला फरिश्ता।
3: हाँ।
0: और भूरे को कुछ खाने को देता है
3: रोज,
0: और नहीं तो क्या।
3: अच्छा,
0: हम तो डेली देखते हैं और इसी की रिपोर्टिंग तो नानी को करते हैं।
4: अम्मा, इस कुत्ते को पहली दफा गुड़िया और इसकी माँ नहीं देखा था, अब देखा क्या था, मदद की शुरुआत भी इसी ने की थी। अम्मा
0: हाँ, रहता हमसे दूर है लेकिन है तो हमारे फैमिली मेंबर जैसा ही।
3: हाँ हाँ, कुछ तो बताया था तुम लोगों ने, अब याद नहीं।
4: गुड़िया, याद करो यार, वो रात कैसी थी है?
2: हाँ।
4: हम घंटों खिड़की से देखते रहे, लैंप पोस्ट के आसपास वो कभी इधर उधर चलता, कभी बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता, खड़ा रहता तो न जाने कितनी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहता। लॉकडाउन शुरू हुए अभी, क्यों अभी 3-4 दिन हुए थे।
2: हाँ, इसी समय की तो बात है।
4: दहशत फैली हुई थी, ट्रैफिक बहुत कम था, फिर भी कोई स्कूटर वाला निकलता तो कुत्ता उसकी ओर लपकने लगता। अरे साफ लग रहा था कि वो किसी का सहारा ढूंढ रहा है।
2: हाँ ये बात तो है, लेकिन कितने डरावने दिन थे, दुकान बंद, दफ्तर बंद, लोगों का आना

0: जाना बंद। और मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई मेरा किचन कैसे चलेगा। और हाँ देखिए, आप भी तो जानते ही हैं, हम लोग कभी राशन तो जमा करके हमने रखा ही नहीं था, तो चिंता लगी।
1: ओ मम्मा, भूरे की बात बताइए ना।
0: अब खिड़की से देखते देखते अम्मा कई घंटे बीत गए। एक तो ऐसी ये सुनसान जगह, पैदल कोई आता ही जाता नहीं, और दोनों तरफ इतने बड़े दानवादार टावर, और बीच में इतना चौड़ा 4 लेन वाला फ्लाईओवर। इतने बड़े महानगर के इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ के टावरों में अम्मा 1000-2000 फ्लैट तो होंगे, पर इनके ठीक नाक के नीचे सूखी नदी जैसा फ्लाईओवर, जहां न आदम चात। और पहले तो दिन भर बरसाती नदी की तरह ट्रैफिक से भरा रहता था, पर लॉकडाउन में तो जैसे भूतों का डेरा बन गया है। हमें तो लग रहा था कि ये बेचारा पिद्दू सा तो है, इतनी अकेली जगह पे भटक कर पहुंच गया, और अब उसे यही नहीं पता चल रहा था क्यों जी कि कहां जाए, कैसे करें और कैसे बस्ती में पहुंचे।
2: ए बहू, तू भी क्या क्या बोले जा रही है।
0: हाँ अम्मा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जरा सोचिए सोचिए जरा सा, ये 30-30 मंजिला पर्वत खड़े हैं धरती की छाती पर इनके अंदर की दुनिया कोई और ही है। इन्हें जमीन नहीं दिखाई देती, बस काम से काम रखते हैं इसमें रहने वाले। अम्मा
2: बहू, हम भी तो ऐसे ही टावर में रहते हैं ना।
0: हाँ तो अम्मा, हम भी तो उनके ही जैसे हैं ना, हम भी तो में सिमटे रहते हैं।
2: हाँ।
0: पर उस दिन, हाँ अम्मा उस दिन न जाने कैसे हमारी भी नजर नीचे झुक गई, वरना दोनों तरफ के टावर में लोग ही लोग हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई पड़ा, बस हमें दिख गया ये बेचारा।
3: अरे हो सकता है और भी लोगों ने देखा हो, पर हिम्मत ना पड़ी हो कुछ करने की। अब तुम्हें याद है ना, हम भी तो घंटों देखते रह गए थे उसको।
0: हाँ वो तो है, लेकिन हमें भी तो नहीं समझ में आ रहा था ना कि क्या करें, कैसे करें, कैसे इस पिल्ले को पुचकारें, बचाएं, और कैसे लेके आए। और याद है ना, यहाँ से कैसे हमने ब्रेड का टुकड़ा फेंका था।
3: हाँ।
0: लेकिन वहाँ कैसे पहुँचता, इतनी दूर था।
3: तब अम्मा हमारी इस गुड़िया ने ही आइडिया दिया।
2: क्या, घर लाने का?
3: अरे नहीं अम्मा, घर लाए होते तो मालूम नहीं चलता क्या। अरे जाकर उसे कुछ देने का, और इसने मुझे अकेले जाने भी नहीं दिया, क्यों याद है ना तुम्हें।
0: हाँ,
3: गुड़िया उस रात क्या हुआ था याद है?
1: पापा पापा पापा।
3: अरे क्या है बेटा, क्या हो गया?
1: पापा जल्दी इधर आइए, जल्दी आइए तो।
3: अरे क्या है बताओ।
1: पापा,
3: तो
1: पापा देखिए ना, वो नीचे बेचारा कितना टायर्ड और हंगरी लग रहा है। आई थिंक ही इज लॉस्ट।
3: हाँ, भूखा और परेशान है, लगता कहीं से भटक के आ गया।
1: यहाँ से देखते रहने से कुछ नहीं होगा, वी मस्ट डू समथिंग।
3: अरे हम क्या कर सकते हैं भाई।
1: पापा क्या हम उस बेचारे पपी को कुछ खाने को दे आए, प्लीज पापा।
3: इस समय लॉकडाउन में?
1: प्लीज पापा।
3: बेटा कर्फ्यू लगा हुआ है, रात का टाइम है, नहीं जा नहीं सकते।
1: अरे पापा ठीक कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा मामा, कुछ नहीं होगा। अब देखिए तो, पता नहीं कितने दिन से भूखा है, बेचारा मर जाएगा।
3: देखते हैं भूखा तो है, सोचने दो।
0: हाँ।
3: अच्छा एक काम करते हैं, अब मैं चला जाता हूँ। हाँ, कुछ हाँ, दे आऊंगा ठीक है। और तुम एक काम करो, कुछ ब्रेड व्रेड पड़े हो तो दे दो कुछ।
0: हाँ हाँ मैं बिल्कुल देती हूँ। मैं ऐसा करते हैं कि पानी भी दे दी ले जाइए, और ये बिस्किट भी ले जाइए, है ना।
3: हाँ।
0: और लेकिन रुके रुके रुके, ऐसा करती हूँ मैं रोटी बना के लाती हूँ फटाफट। है लीजिए ये सामान, हमने सब थैले में रख दिया ठीक है। ये देखिए पानी है ना, और रोटी, दोनों चीजें हैं, और ये सामान रख दिया है, उसको पानी वानी पिला दीजिएगा। और मास्क कहाँ है आपका?
3: अरे हाँ लगा लिया है।
0: सैनिटाइजर रखिए भाई।
3: अरे रखा है भाई।
1: अरे रुकिए रुकिए, अरे मुझे भी तो जाना है, मुझे उसे पास से लेना है।
0: भाई तुम वहाँ क्या करोगे?
3: अरे कह रही है तो जाने दो ना यार,
0: कमाल है आप तो।
3: तुम डरोगी तो नहीं ना?
1: नहीं नहीं पापा बिल्कुल नहीं।
3: हाँ तो चल चल चल,
0: डरोगी नहीं है क्या है
1: मम्मा? प्लीज
3: चलो चलो चलो, लिफ्ट बुलाओ और तुम दरवाजा बंद कर लेना अंदर।
1: हाँ हाँ पापा आइए।
4: कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
3: अच्छा ठीक है, दरवाजा ठीक से बंद करना।
0: ठीक है ध्यान रखना अपना। तो बोल
4: कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
0: अम्मा ये लीजिए, आप ऐसा करिए दवा ले लीजिए सोने के पहले वाली, और ये हल्दी वाला दूध भी पी लीजिए।
1: बहू क्या बात है, बड़ी हड़बड़ी में दिख रही है, बाहर ये आवाजें कैसी आ रही थी बहू?
0: अरे वो बाप बेटी नीचे गए ना अम्मा। अरे अम्मा

0: दूध पी के सो जाइए।
1: इतनी रात को लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना बहू?
0: अरे अम्मा आप फिक्र मत कीजिए, दूध पीजिए और सो जाइए, वो लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में।
1: पता नहीं यहाँ क्या क्या चलता रहता है।
0: मैं सोचती हूँ खिड़की के पास जाकर देखती हूँ, पता नहीं पहुंचे कि नहीं वो लोग। तो पेड़ बीच में आ रहा है, लगता है अभी पहुंचे नहीं। क्या करूं, बड़ी चिंता। मैं सोचती फोन कर लेती हूँ। हेलो, अरे तो फोन ही नहीं उठा। हेलो हेलो गुड़िया।
2: हाँ मम्मा।
0: तुम लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं।
2: अरे मम्मा उड़कर थोड़ी ना पहुंच जाएंगे, पैदल चल रहे हैं भाई। और पता है मेन गेट पर सिक्योरिटी वाले बाहर ही नहीं जाने दे रहे थे।
0: क्यों बोला?
2: कितना समझाना पड़ा उन्हें, और आज बाहर हवा भी चल रही है।
0: हवा?
2: और सड़क पर बहुत सारे डॉग्स हैं मम्मी, सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अच्छा आप फोन रखिए, आप खिड़की पर ही है ना?
0: हाँ हाँ मैं यही हूँ।
2: हाँ तो हम पहुँचेंगे तो आपको दिखी जाएंगे, आप बस वेट करिए।
0: अच्छा
1: बहू बहू आ गए वो लोग क्या?
0: अरे अम्मा आप यहाँ आ गई। अम्मा आप फिकर क्यों कर रही हैं, वो लोग आ जाएंगे, आप आराम कीजिए।
1: अरे आराम कहाँ से होगा बहू, इस कोरोना का ऐसा डर बैठ गया है कि सपने भी बुरे बुरे आते हैं। इतना डर तो आजादी मिलने के दिनों में भी नहीं लगा था।
0: आजादी? अम्मा आजादी मिलने पर डर क्यों भला लगा, और मतलब आप तो उधर से आई भी नहीं थी फिर।
1: आजादी मिलने का नहीं, जो मारकाट मची थी उस वक्त उसका डर। हम कहीं से उजड़ कर नहीं आए थे, पर आतंक ऐसा था कि अब हम क्या कहें।
0: अम्मा आपकी उम्र क्या थी उस समय?
1: अरे वही 5-6 साल की रही होंगी। हम बच्चों को घर में बंद कर दिया गया था, सबको डर था कि लड़कियों को उठा ले जाते हैं। पर आज का वक्त ये तो बहुत ही डरावना है, किसी को हम छू नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, सैर करने तक हम नहीं जा सकते।
0: अरे अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्या, आप तो पहले भी कहीं सैर वैर करने नहीं जाती थी भाई।
1: पर डर का साया तो 2400 घंटे है ना, और ऊपर से ये मुआ टीवी मरीजों की गिनती, मरने वालों की गिनती ऐसे बताता रहता है जैसे मौत का खेल चल रहा हो। इतने बीमार पड़ गए, इतने मारे गए।
0: अरे अम्मा अम्मा अम्मा अम्मा आप घबराइए मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा शांत रहिए।
1: हाँ।
0: मैं खिड़की से देखती हूँ कि वो लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, है ना?
1: हाँ हाँ देख देख
0: ठीक है।
1: आ जाए तो जरा मुझे बता देना।
0: हाँ हाँ उठाती हूँ। गुड़िया गुड़िया पहुँच गए तुम लोग? हाँ हाँ मैं खिड़की की तरफ ही आ रही हूँ। हाँ हेलो मैं आगे खिड़की पर, अब रुको। हेलो अरे फोन मत बंद करना। हाँ हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। अरे पर आवाज तो बेटा फोन पे ही सुनाई देगी ना। अरे अम्मा आप, हाँ लो दादी भी तेरी यहीं आ गई। अम्मा देख रही हैं, ये लोग नीचे ही खड़े हैं, पहुंच गए उस बेजुबान प्राणी के पास।
1: हाँ बहू एक मिनट, मुझे भी तो आगे आने देना, खिड़की के पास आने दे जरा।
0: हाँ अम्मा ये हम कुर्सी यहाँ रख देते हैं, आप यहीं बैठिए, आइए आइए बैठिए। मैं फोन को भी स्पीकर पर ऑन कर देती हूँ ताकि अम्मा आप लोग को भी ना इन लोगों की आवाज सुनाई दे, सब बातें पता चल जाए। गुड़िया गुड़िया सुन, पहले उसे पानी पिलाओ।
2: हाँ हाँ मम्मा। मम्मा आप देख रहे हो?
0: हाँ, हाँ?
2: जो कटोरा लाए थे ना, हाँ? मैंने उसमें पानी डाल दिया। मम्मी देखो ना कैसे पूंछ हिला रहा है और डर भी रहा है। आ गया आ गया, पानी के कटोरे के पास आ गया वो।
1: अरे लग रहा है रोटी भी खिला रहे हैं।
0: अब पर अम्मा रोटी सूंघ के तो पीछे हट गया।
1: अरे डर रहा होगा ना शायद।
2: मम्मा इसे ना बहुत प्यास लगी है, आप देख रहे हो कितने तेज तेज पानी पी रही है।
0: पता नहीं कब से प्यासा था, और गुड़िया मेरा तो मन कर रहा है कि उसे पुचकारूं, प्यार करूं, छोना सा तो है।
3: पुचकारने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है मैडम। तुम लोग आसमान में टंगे हो?
2: आसमान नहीं स्वर्ग में बैठे हैं।
1: बड़ा स्वर्ग स्वर्ग में बैठे हैं। अरे कैदी है कैदी माचिस की डिबिया में। हाँ।
3: खुद को खुशकिस्मत समझो अम्मा, लाखों करोड़ों में मिलती है ये माचिस की डिबिया।
0: भाई कमाल है, इतनी दूर खड़े हैं फिर भी चैन नहीं है, बस बहस करा लो इनसे जब चाहो तब।
3: बहस नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ।
0: अच्छा पहले आप उस जो बेजुबान प्राणी के लिए गए ना उसकी सेवा करिए, और जरा फिर ये बताइए इतनी देर कहाँ भटक रहे थे आप दोनों? 15 मिनट का रास्ता, पूरे 2 घंटे लगाए आप लोगों ने।
3: जमीन आसमान का फर्क यही होता है मैडम।

0: from the app. मतलब हम समझा दें आपको जमीन आसमान का, मतलब यहां जहां हम खड़े हैं वहां पहुंचने के दो बड़े मोड़ हैं
1: जी।
0: जब हम चलने लगे तो पहले सुनसान रास्ता आया, डरावना, अंधेरा, तेज हवा चल रही थी, कागजों, प्लास्टिक और तमाम चीजों का कचरा उड़ने लगा, गलियों से कुत्ते निकलकर भौंकने लगे, छीना झपटी करने लगे, अजीब सा अंधड़ चलने लगा, कूड़े कचरे की बारिश होने लगी, रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था।
1: क्या कह रहे हैं आप, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, न हवा न बारिश।
0: कह तो रहा हूँ जमीन पर हालात कुछ और ही होते हैं।
1: अरे क्या ऐसा है, बोले जा रहे हैं, आप गुड़िया को फोन दीजिए।
2: अरे बहू क्यों गुस्सा कर रही हो?
1: अरे अम्मा आप रुकिए, गुड़िया गुड़िया ये पापा तुम्हारे क्या कहे जा रहे हैं?
3: हाँ मम्मा सच में बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। हाँ? सुनिए तो, फिर पहला मोड़ आया तो वहाँ बहुत लोग थे। लोग क्या थे, प्रोसेशन जैसा ही था, एक जुलूस, लोग बच्चे बूढ़े मर्द औरतें सिर पर गठरियां उठाकर चले जा रहे थे, पैदल साइकिलों पे, साइकिल रिक्शा पे, किसी भी तरह बस चले जा रहे थे। रादर दे वर रनिंग, यू नो, रनिंग अवे फ्रॉम सिटीज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट मामा टू देयर नेटिव प्लेसेस। मामा दे वर एस्केपिंग, माइग्रेटिंग।
1: अरे ये सब तो टीवी पर आता है, प्रवासी मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं और क्या।
3: हाँ, टीवी जैसा ही पर एकदम रियल, लाइव, जिंदा। एक बच्चा सिर पर बैग उठाकर चला जा रहा था।
1: अच्छा,
3: मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने रिप्लाई ही नहीं दिया, भाग गया। पता है मम्मी, एक अंकल थे बूढ़े से, नंगे पैर मम्मा।
1: अच्छा,
3: और उनके पैरों में चोट लगी थी। पता है मम्मा कितना ब्लड आ रहा था, और पापा को इतना वरिड मैंने कभी नहीं देखा मम्मी।
1: अच्छा,
3: जितने वो उस सीन को देखकर हुए। एंड यू नो
1: क्या,
3: यू नो पापा ने क्या किया?
1: क्या?
3: पापा ने अपने स्लीपर्स उन अंकल को दे दिए मम्मा।
1: अच्छा,
3: अब देख सकते हो पापा उसके बाद नंगे पैर चल रहे हैं।
1: हैं? हाँ, सच में नंगे पैर ही हैं। अरे अम्मा, अम्मा देखिए तो जरा सा,
2: इन्होंने
1: तो
2: हुआ?
1: अरे अम्मा ये देखिए तो, इन्होंने स्लीपर अपनी दे दी किसी को।
2: अरे
1: हाँ, इनके पैर दुख रहे होंगे गुड़िया।
2: कोई बात नहीं, कोई बात।
1: अरे गुड़िया गुड़िया पापा को फोन दो। हेलो हेलो।
0: हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ?
1: अरे आप नंगे पैर हैं, सड़क चुभ रही होगी आपको।
0: नहीं नहीं, आज तो जमीन को फील कर पा रहा हूँ। जानती हो जिंदगी को इस तरह कभी नहीं देखा। जिंदा बचा रहने की इच्छा का परम रूप, चरम रूप, जिजीविषा शायद इसी को कहते होंगे। ये लोग इस अंधेरे वक्त में दिखे, इन्हें एहसास हो गया कि इन्हें कोई नहीं बचाएगा, न साहूकार, न सेठ, न सरकार, न अमीर, न गरीब। खुद ही खुद को बचाना होगा, अपने ही पैरों पर भरोसा करना होगा। ये लोग न जाने कब से चल रहे हैं, और इन लोगों को न जाने कब तक चलते रहना है।
1: ये कौन लोग हैं?
0: यही तो विडंबना है, ये लोग हमारे ही शहरों में थे, हमारे शहर इनके ही बनाए हुए थे, ये शहर इनके चलाए ही चल रहे थे, पर ये आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए। हमारे लिए इनका अस्तित्व ही नहीं था, ये हमारी ही तरह हाड़ मांस के जिंदा इंसान है।
1: आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो लगता है आपने कोई सपना देख लिया है, और वो भी जागते हुए।
0: ये हमारे जैसे लोगों के लिए सपना ही है, कल्पना से भी परे, पर हकीकत। जमीन पर उतर कर ही इसे जाना जा सकता है। अरे जानती हो हमारा डर तो दाल रोटी के साथ सब्जी न मिलने का डर है।
1: हाँ।
0: काम वाली नहीं आएगी तो उसके बगैर काम कैसे चलेगा, इसका डर है। पर पता है
1: क्या,
0: इनका डर भूखों मर जाने का डर है। इन्हें यही डर है कि जिंदा बचेंगे कि नहीं। इन लोगों ने इसे भोगा है, मैंने नहीं भोगा, सिर्फ करीब से देखा है।

0: सच पापा, बड़ी वियर्ड रात थी वो। ओह माय गॉड, आज भी याद करके गूज़बम्स हो जाते हैं।
1: क्या गूज हो जाते हैं? क्या बक रही है?
2: अरे अम्मा, रोंगटे खड़े होने को अंग्रेजी में गूज बम्प कहते हैं। अरे अम्मा, तुम इसे कभी कभी अपनी भाषा भी समझाया करो यार।
1: हाँ हाँ
0: पापा, लेकिन उस रात पप्पी को जो पानी पिलाने का एक्सपीरियंस था ना, वो मेरी लाइफ का दी बेस्ट एक्सपीरियंस था।
1: हाँ, तभी तो तुमने ढिंढोरा पीट दिया, हाय हाय अनाथ कुत्ता है, मर जाएगा।
0: अरे नहीं दादी, मैंने तो बस सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मुझे डर लग रहा था कि हम इतनी दूर रोज रोज थोड़ी ना जाएंगे उसे खाना खिलाने।
1: हाँ, तो इसीलिए तो आ गया ना तुम्हारी मदद करने के लिए वो उजला फरिश्ता।
0: सच्ची? और तब से देखो वो पपी, अरे जिसे आप भूरे कहती हैं,
1: हाँ,
0: दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन रोज शाम को फ्लाईओवर पर आ जाता है ठीक हमारी खिड़की के नीचे।
1: हाँ।
0: और आपको पता है एक लेन जो खाली रहती है ना, वहीं पर, और वो पर्सन वहीं आकर जॉगिंग करता है। पहले भूरे को खाना खिलाता है, फिर अपना मोबाइल चेक करता है, फिर 10 चक्कर यहाँ से वहाँ लगाता है। और पता है ये भूरे लाल उसके आगे पीछे नाचते कूदते रहते हैं। पता है दादी, बारिश हो जाए ना तो भी इन दोनों की रूटीन नहीं टूटती।
3: अरे अम्मा, जब से ये भूरे को इन्होंने क्या देख लिया, उसकी सेवा क्या करने लगी, बस सोते जागते बस भूरे की कहानी, भूरे की कहानी। दादी को सुनाएंगी, फिर नानी को सुनाएंगी। भाई,
2: अरे तुमको याद नहीं उस दिन पेरेंट्स मीटिंग के बाद जब तुम वापस आई तो तुम्हारे साथ सहेलियां भी आई थी तुम्हारी?
3: बिल्कुल।
2: उनको दिखाने बैठ गई, उनको बताने लगी, उनको ले गई अपने साथ कि चलो हमारे साथ हमारे भूरे को देखो।
3: और वो तो उसके संग संग उजले फरिश्ते को भी देखो। ठीक है, बेजुबान प्राणी की सेवा तो हम सबको करनी ही चाहिए।
2: हाँ बिल्कुल सही बात है, प्राणी की सेवा करना परम धर्म है। और ये जो इस समय कोरोना का समय चल रहा है, इसमें ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बेजुबान जानवर आखिर हमारे ही तो भरोसे हैं, तो ये करना बहुत जरूरी
3: है। बस बस बस शुरू हो गया ये, इनको मौका मिला गुड़िया, और तुमने मौका दिया और पापा शुरू हो गए। अच्छा सब लोग बस करो, और गुड़िया चलो आओ, सब पराठे खा लो, आ जाओ आ जाओ।
0: क्या मम्मी पापा आप भी ना? अरे भूरे तो हमारा हीरो है, आप लोग भी ना। हाँ। ओह नो, देखो ना बातों में तो मैं भूल ही गई, आज भी आ गया होगा अब तक, और नानी भी मेरा वेट कर रही होंगी। अरे मुझे उन्हें रिपोर्ट देनी है ना भाई, मैं तो जा रही हूँ खिड़की पर। हेलो हेलो नानी।
4: गुड़िया,
0: अरे आप जाग रही हैं?
4: हाँ बेटा, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ।
0: इज इट? क्या बात है,
4: जल्दी जल्दी बता, क्या वो आया? क्या क्या कर रहा?
0: हाँ हाँ नानी, अब सुनिए तो इत्मीनान से, मैं आपको पूरी रिपोर्टिंग दूंगी, पूरी गुड़िया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम खिड़की, आप बस सुनते जाइए। हाँ तो नानी, मैं देख रही हूँ कि उजला फरिश्ता आ चुका है, उसने अपने बैग से कुछ निकाला, अब वो रोटी है या ब्रेड ये तो पता नहीं चल रहा है यहाँ से, लेकिन भूरे लाल भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं इतना दिख रहा है। अब खाना खत्म भूरे लाल का, और भूरे की मस्ती शुरू। उजला फरिश्ता अब तेजी से सैर कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, और ये भूरे लाल कभी उसके आगे कभी उसके पीछे उछल कूद कर रहे हैं। नानी आप बस सुनती चलिए। और ये मैं क्या देख रही हूँ? ओहो, भूरे ने उछल कर फरिश्ते की पैंट पकड़ ली, और पैंट छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए उजला फरिश्ता। ओह, मैं कह सकती हूँ नानी कि भूरे बड़ा खुश है, और नानी भूरे खुश है तो मैं खुश हूँ, और मैं खुश हूँ तो नानी आप खुश हैं, है कि नहीं?
4: बिल्कुल खुश।
0: तो नानी आज की रिपोर्टिंग के बाद अब तो आपको नींद आएगी ना?
4: हाँ बेटा जरूर आएगी।
0: तो ठीक है, आज आप सो जाइए आराम से इत्मीनान से, मैं कल शाम को आपको फिर कॉल करके रिपोर्ट करूंगी। ओके, गुड नाइट नानी, बाय बाय।
2: गुड नाइट गुड़िया, बंद करो बेटा फोन अपना, इधर आओ, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। तुम्हें खिचड़ी टाइप बिरयानी अच्छी नहीं लगी थी ना?
0: हाँ।
2: तो जानती हो मैंने क्या किया?
0: क्या बताया पापा?
2: दूध लाया।
0: हाँ?
2: दूध तो मिल रहा है लॉकडाउन में,
0: लेकिन मुझे दूध अच्छा नहीं लगता।
2: मालूम है मुझे, इसीलिए मैंने उसका छेना बनाया।
0: क्या बात है!
2: और छेने के बाद उसके संदेश बनाए।
0: इज इट
2: बंगाली संदेश?
0: ओ वाओ पापा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
2: तो मीठे मीठे संदेश खाओ, और हाँ अपनी मम्मी को भी खिला देना, हमेशा कहती ना कि यही खाते रहते हैं हमेशा।
0: वाओ यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट।

अभी आप सुन रहे और ध्येय अनूप सेठी का लिखा नाटक जमीन आसमान। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार था। माँ रेणु चतुर्वेदी, गुड़िया आकांक्षा सिंह, दादी ममता सिंह, नानी अनुश्री पाठक और पापा अमरकांत दुबे। संगीत संयोजन और तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी।

जी विविध भारती का मुंबई केंद्र है, FM 102.8 और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर शाम के 4 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लम्हे प्रोग्राम में और मैं हूँ आपका आरजे चेतन। आसपास के वातावरण साफ सुथरा हो तो किसे अच्छा नहीं लगता है, और इसमें नगर निगम और स्वच्छता कर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो तो अपने तरफ से पूरा योगदान देते हैं, परंतु इसके बावजूद कुछ लोग गंदगी और कचरा करने से बाज नहीं आते। वह भी इंसान ही है, आखिर कितना साफ करेंगे। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास को साफ रखने की जिम्मेदारी स्वयं ही करना है, ताकि साफ सफाई से हम स्वस्थ रहे और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहे। आसपास की रखो सफाई, इसमें हम सबकी भलाई। स्वच्छ रखेंगे वातावरण, स्वस्थ रहेंगे हम हर पल हर क्षण। घर को हर दिन करें सफाई। हमें हमारे घर के हर रोज सफाई करना चाहिए। वह कचरा इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, इससे कीटाणु पनपते हैं और बीमारियां फैलती है। घर में कुछ ऐसे कोने होते हैं जिसे नियमित रूप से सफाई करना चाहिए, जैसे रसोई घर। रसोई घर जहां हमारा भोजन इत्यादि बनता है, उसकी सफाई नियमित होना चाहिए। बर्तन को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। गैस स्टैंड बर्तन रखने की जगह सभी जगह साफ करना चाहिए। रोज किचन की झाड़ू लगाना चाहिए, ताकि खाने के साथ हम कोई गंदगी अपने खाने में आने न दे और साफ सुथरा भोजन ही खाए, साफ सुथरा किचन रखे। नियमित पोंछा और धोने जैसे सामान को धोए, बाथरूम को रोज साफ करें, दीवारें साफ करें, कुछ अच्छे से एंटीमाइक्रोबियल यूज करके साफ करें तो और भी अच्छा है। जहाँ हम हमारी गाड़ी रखते हैं, वहाँ रोज झाड़ू लगाए और बगीचे में सफाई रखे हो। कोई भी कचरा और प्रयोग में न आने वाले सामान को इकट्ठा न होने दे। यदि हम हमारे किचन, बाथरूम और पूरे घर में साफ सफाई नहीं रखेंगे, तो चचुंडर, कॉकरोच, मक्खी, चींटियां, मच्छर आदि पनपते हैं। और साफ सफाई में अगर हम लापरवाही बरतते हैं, बर्तन और अन्य सामानों के साथ ये गंदगी हमारे मुंह में जाते हैं, जिससे हमें कई तरह के बीमारियां पकड़ लेते हैं। यदि मच्छर पनपते हैं तो मलेरिया, कॉलरा, निमोनिया, पीलिया या सब बीमारी होती है जो कि गंदगी की वजह से फैलती है। इसीलिए हमें हमारा घर और आंगन की सफाई पर नियमित ध्यान देना चाहिए। इसीलिए पूरे घर पर नियमित झाड़ू और पोंछा लगाना चाहिए। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227।

0939. I repeat, 0951522703 9. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com. धूल इत्यादि को पहुंचने और बगीचे में कहीं भी पानी नहीं होने देना चाहिए। किसी भी तरह की गंदगी बीमारी का लक्षण होता है, इसीलिए बचना चाहिए और नियमित साफ सफाई करना चाहिए। कुछ लोगों का सोचना है कि जहां गरीब व्यक्ति रहते हैं वही ज्यादा गंदगी होती है, परंतु ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गरीबी और साफ सफाई का दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। गरीबी तो इंसान की मजबूरी है, परंतु सफाई तो उसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए अमीर या गरीब मायने नहीं रखता, और घर की साफ सफाई में सबकी बराबरी से हाथ बांटने की मंशा होनी चाहिए। केवल घर के बड़े, जिसमें माँ होती है, माँ घर के हर काम को करती है, तो क्या ये घर केवल माँ का होता है? उसमें रहने वाले सभी सदस्यों का नहीं होता है। इसीलिए सभी सदस्यों को मिलजुलकर इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए, और ये सोच परिवार के हर सदस्य के नजरिए पर निर्भर करता है। बचपन से ही बच्चों की देखभाल माता पिता और घर के अन्य सदस्य करते हैं, लेकिन बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उन्हें आपको सिखाना होगा कि साफ सफाई रखना जरूरी है। बचपन से ही उसे अपनी सफाई की शिक्षा दे, साथ ही उसे अपने आसपास की जगह को साफ रखना सिखाए। उसे बताए कि अगर साफ सफाई नहीं रखी जाएगी तो बीमारी होगी, और बीमारी होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए उसे बताए कि अपनी साफ सफाई रखे और अपने आसपास की जगह को भी साफ रखे। साफ सफाई में अपने बड़ों की मदद करे, इससे वह भी साफ सफाई करना सीखेगा और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0951522703 9. आई रिपीट, 0951522703 9. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com. साफ सफाई इंसान की फितरत होती है। वह अपने घर के आसपास तो साफ रखते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं घर ही को अपना समझते और अपने घर के बाहर झूठा और जो भी कचरा होता है उठाकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी केवल घर के अंदर तक ही सीमित है। इसीलिए अपना फर्ज भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि सड़क, अपने घर का बगीचा साफ रखना उनकी जिम्मेदारी है। सड़क से ही गंदगी हमारे घर तक आती है, और इसके साथ ही कई तरह की बीमारियां भी लेकर आती है। इसीलिए स्वयं साफ सफाई रखें, और जो कर्मचारी और नगर निगम की गाड़ियां आती है उसमें अपने घर को साफ रखकर उन्हें अपना पूरा योगदान प्रदान करें। इस प्रकार हम हमारे घर के और आसपास की सफाई हमारे स्वास्थ्य के साथ ही वातावरण को भी साफ रखते हैं, और इसका प्रथम पाठ हम हमारे घर से ही मिलता है। यदि हम हमारे घर को और हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखेंगे तो धीरे धीरे शहर और शहर, देश, सभी जगह सफाई दिखने लगेगा। प्रदूषण में जमा हमारे देश की गिनती निचले स्तर पर की जाती है, वही हमें आगे और आगे प्रथम स्थान पर लाना होगा, और इसकी शुरुआत हमें हमारे आसपास के वातावरण से शुरू करना होगा। देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है। क्या इसमें नागरिकों की कोई भूमिका नहीं है? हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। विद दिस लवली कोट, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे इन लम्हे प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0951522703 9. आई रिपीट, 0951522703 9. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com. दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

जी, विविध भारती का मुंबई केंद्र है, एफएम 102.8 और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज़।

0: सीमा जी, बात चल रही है आज आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर, आपकी पसंद की फिल्मों पर। एक स्त्री होने के नाते आपने कहा कि बहुत संघर्ष किया आपने, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कभी मन में आया, इस तरह का लेखन, इस तरह की कहानी?
1: ज्यादातर तो मैंने स्त्री प्रधान ही फिल्म या सीरियल्स जो भी हैं बनाई हैं। जैसे अभी हार्ट तो वो ही थी, और अभी जो मैं बना रही हूँ पतंग मसाला, वो भी एक लड़की की कहानी है, वो भी स्त्री प्रधान ही है। और सीरियल्स जो बनाए हैं वो भी स्त्री के इर्द गिर्द ही ज्यादातर घूमते थे। अभी जो अवंतिका जो सीरियल बनाई है वो चूंकि इतिहास है, तो आप उज्जैन का इतिहास लिया है मैंने, जब कृष्ण आए उज्जैन सांदीपनी आश्रम में पढ़ने, तब से लेके विक्रमादित्य तक, तो उसमें स्त्री कैरेक्टर बहुत सारे। एक मैं अभी मैं एक प्रोजेक्ट लिख रही हूँ, वो है वामा नाम रखा है उसका, स्त्री को कहते हैं वामा जी। तो मैंने वैदिक काल की जितनी विदुषी महिलाएं थी उन पे बना रही हूँ मैं, अपाला और ना भारती और मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, तो उस तरह की जो कि वैदिक पीरियड में हमारी स्त्रियों कितनी ज्ञानी, लोपामुद्रा,

0: और ये सब, तो उन पे बनाने का सोच रही हूँ मैं।
1: जी, तो कहाँ तक पहुँचा आपका ये प्रोजेक्ट जिस पर आप बनाने की सोच रही हैं? और
0: लेखन तक है अभी, और होपफुली इस फिल्म के बाद जो मैं अक्टूबर में शूट कर रही हूँ पतंग मसाला, उसके बाद वो शुरू कर देंगे।
1: क्या लगता है आपको इस तरह का जब आप लेखन करती हैं तो आपको एक आत्मसम्मान, एक आत्मसुख, मतलब एक सुकून मिलता है?
0: देखिए, स्त्री होने के नाते, मतलब स्त्री की संवेदना जो है उसको केयरने में मुझे लगता है कि मैं काफी करीब हो जाती हूँ स्त्री के, तो मुझे फिर उसको पढ़ना और गढ़ना उस कैरेक्टर को आसान हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ
1: जी
0: और स्त्री के सारे संघर्ष मैंने देखे हैं। मेरी माताजी, मेरी मौसी, मेरे जो महिला दोस्त हैं उनकी जीवन को मैंने देखा है, तो उसे उतारने में बहुत आसान लगता है मुझे उसकी संवेदनाएं। और कई पुरुषों लेखकों ने, जैसे प्रेमचंद हैं, वो
1: जी
0: पुरुष होके भी उन्होंने स्त्री का इतना सुंदर, रेणु, टॉल्स्टॉय ना, दोस्तोवस्की, गोरकी, इन्होंने बहुत खूबसूरती से स्त्री का, सबसे ज्यादा आपके शरदचंद्र, उन्होंने तो स्त्री का ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई स्त्री बैठ के लिख रही है।
1: जी, जिस तरह से उन्होंने लिखा लगता ही नहीं कहीं कि एक पुरुष ये बात लिख रहा है, स्त्री की पीड़ा, स्त्री के संघर्ष को, स्त्री के जज्बातों को, स्त्री की फीलिंग्स को
0: जी
1: जिस गहराई में जाकर इन लेखकों ने लिखा। तो आप एक स्त्री होकर जब वो लिख रही हैं तो जाहिर है कि आप उस गहराई तक पहुंच पाती हैं जहां स्त्री को पहुंचना चाहिए।
0: जी कोशिश करती हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकती कि उस गहराई में मैं पहुँच गई है मेरी लेखनी, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितने संसार में स्त्रियाँ हैं सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी संवेदनाएँ हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएँ हैं, अलग अलग समस्याएँ, ढेर सारी समस्याएँ, तो उनको कहने में मैं इतनी तो कॉशियस रहती हूँ, सचेत रहती हूँ कि उसकी गरिमा को रखते हुए, स्त्री की गरिमा को रखते हुए। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि स्त्री के पक्ष में हूं मैं, लेकिन मैं पुरुष के विपक्ष में नहीं
1: नहीं
0: हूं,
1: हूं
0: मैं उसके विरोध में नहीं हूं,
1: जी जी
0: क्योंकि संसार दोनों से चलता
1: जी
0: है ना। आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री अच्छी है तो पुरुष खराब है, ऐसा नहीं है। देखिए, पावर गेम है ये। पुरुष के हाथ में जब पुरुष सत्ता थी या है तो वो उसका दुरुपयोग भी कर देता था, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे निर्देशक, मैं अपनी कला से संबंधित ही लोगों की बात चर्चा करूंगी, और लेखक इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने कभी अत्याचार नहीं किया स्त्री पे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मेरी माता का मैंने जो सम्मान देखा है मेरे पिता की नजरों में, उन्होंने तुमने ही बोला माँ, जबकि उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन वो कम्मो जी बोलते थे, वो
1: जी
0: कमल नाम था, कमल शबनम उनका तखल्लुस था, तो वो हमेशा कम्मो जी आप ये कर दीजिए आप जनाब। तो हमने तो वो लोग देखे हैं जो स्त्री को इतना सम्मान देते थे।
1: आज एक लंबी बातचीत आपसे हम कर रहे हैं, लेकिन अब एक गीत हो जाए आपकी पसंद का।
0: जी

0: आज की लेखिकाएं भी स्त्री विमर्श पर लगातार चर्चाएं करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे एक अलग दिशा की ओर जा रही हैं। जब हम बात करते हैं स्त्री विमर्श पर, तो वही आपने कहा कि वो पुरुष विरोधी होकर जब लिखा जाता है तो स्त्री विमर्श फिर स्त्री विमर्श नहीं रह जाता।
1: देखिए, आप है ना, संसार में चलाने के लिए ईश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। आप ये कहें कि पुरुष खराब है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, हम अकेले ही रहेंगे, तो हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें दोनों की जरूरत है। जैसे वो बड़ा क्लीशे सा शब्द है ना कि भाई गाड़ी के दोनों पहिए हैं,
0: बिल्कुल,
1: आप उनके बिना नहीं चल सकते। और अब पुरुषों को भी थोड़ा सा अपने आप को बदलने की बहुत ज़रूरत है कि अब स्त्री को नए परिपेक्ष में देखें, वो एक नए ढंग से देखें उसके सम्मान को, उसके काम के सम्मान को। मुझे जो स्वतंत्रता है ना, वो शब्द स्वच्छंदता नहीं बनना चाहिए
0: जी।
1: स्त्री का या पुरुष की स्वतंत्रता जो है वो अभी थोड़ा सा, मैं इस पे बोलना चाहूंगी,

0: की स्वतंत्रता आर्थिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए
1: जी,
0: है ना। ये दो स्वतंत्रता, वो अपना प्रोफेशन खुद चुने, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, और अपना कोई भी चीज चुनने के लिए वो फ्री हो,
1: फ्री
0: ये होना वहाँ चाहिए,
1: उसे स्वतंत्रता
0: जी,
1: मिलनी चाहिए
0: जी,
1: अपने निर्णय को लेना सीखे कि जिंदगी को किस ओर ले जाना है सही तरीके से। तो आपने इतनी फिल्में देखी हैं, आप फिल्मों की मुरीद हैं, सिनेमा लिखती हैं, सिनेमा को डायरेक्ट करती हैं, आज जो वर्तमान सिनेमा की हम बात करें, महिलाओं को जिस रूप में दर्शाया जा रहा है, आप उसे कहां तक सहमत हैं? जो स्थिति फिल्मों में स्त्री की दिखाई जा रही है, स्त्री खुद क्या इसकी जिम्मेदार है, या वहाँ कहीं ना कहीं मजबूरी या प्रोफेशन आ रही
0: है? देखिए, समाज में मुझे क्या लगता है कि जब से शराब स्टेटस सिंबल बन गई है, तब से हास होने लगा है।
1: जी,
0: अब हर फिल्म में आप दिखा रहे हैं कि स्त्री मध्यपान कर रही है, या ये कर रही है, वो कर रही है, तो ये कौन सी चीज बोलना चाह रहे हैं आपके, मतलब ये सामान्य होनी चाहिए ये चीज, इसके तो मैं खिलाफ हूँ। आप मुझे शायद पुराने समय का, पुराने विचारों का आप वो कर दें, लेकिन कोई भी चीज, औषधि भी अगर आपको मानसिक रूप से गुलाम बना रही है तो भी गलत है ना। तो किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह की ये चीज़ें, उसको ग्लोरीफाई करके, उसको बहुत ज़्यादा आप हाईलाइट करके, और अपनी हीरोइनों से आप, क्योंकि आम आदमी, एक किस्सा सुनाती हूँ मैं। हम लोग दिल्ली गए थे शादी के बाद, मैं और पुरी साहब, तो पुरी साहब तो आर्ट फिल्में और इस तरह की फिल्में थी, हम लोगों के पास कोई इतना पैसा तो था नहीं। तो मेरे एक वहाँ पर मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एड पूरी साहब से बनवा देते तो तुम लोगों का आना जाना फ्री हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। एड में बहुत पैसा मिलता है, जो पूरी एक फिल्म में जो एक साल तक बनती है उतना एक दिन की शूटिंग में एड में मिल जाता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बात है, ये तो पूरी साहब करेंगे। पूरी साहब बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा काय का एड है? बोले सिगरेट का। तो पूरी साहब बोले, उससे पहले ही मैंने कहा नहीं, पूरी साहब सिगरेट का ऐड नहीं करेंगे। पूरी साहब ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं करूंगा, मेरे कहने से पी लेंगे क्या लोग? मैंने कहा पूरी साहब, अगर आपके कहने से नहीं पिएंगे, ये आप तर्क दे रहे हैं, तो ये आपको इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कला फील्ड में हैं, आपको लोग देखते हैं, और इनको भी पता है कि आप कहेंगे तो 1000 लोग देखेंगे, 2 लोग तो पिएंगे, है ना। अब हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं, वो अगर इस तरह के ऐड करते हैं और कहते हैं कि हम कोई समाज सुधारक नहीं हैं, समाज सुधारक आप हो या ना हो, आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बच्चा जो है 15 साल का से लेके 5 साल का बच्चा भी आपके उस पे डांस करता है और आपको सुनता है, आपको हीरो मानता है वो, या हीरोइन मानता है। आप जो करेंगे वो उसका अनुसरण करेंगे। तो आप अगर इस तरह के ऐड करेंगे, विज्ञापन करेंगे, आपको तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगियां जो है आपने स्टेक पे लगा दी है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो पूरी साहब ने नहीं किया फिर वो ऐड। तो हम उस तरह के लोग हैं जो सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, कि अगर हम कुछ कह रहे हैं और हमारी बात 10 लोग भी सुन रहे हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के करनी और कहनी चाहिए।
1: जी, आपकी कथनी और करनी में अगर अंतर है तो फिर आपकी सामाजिक जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती।
0: जी
1: जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक कलाकार क्या कह रहा है, क्या विज्ञापन दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समाज में क्या फैला रहा है। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, और आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी, मेरी पसंद का गीत है
2: जाने वालों

0: सीमा जी, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपको कौन से कलाकार पसंद हैं इस इंडस्ट्री में, जो आपने बतौर एक्टर या एक गहराई के तौर पर पसंद किए, तो कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप पसंद करती हैं?
1: दिलीप साहब, मोतीलाल जी, बलराज साहनी, फिर उसके बाद जो बचपन में हमारे हीरो हुआ करते थे वो राजेश खन्ना
0: जी,
1: और देव साहब, धर्म जी, इस तरह के जो कलाकार हैं उन्होंने अलग अलग तरह का सिनेमा किया। अब आप देखिए, धर्म जी बिल्कुल घोर कमर्शियल फिल्मों में थे, लेकिन उन्होंने अनुपमा की, सत्यकाम उन्होंने प्रोड्यूस की, है ना, और कितनी फिल्में हैं जो उन्होंने
0: शुरुआत की, बहुत सारी फिल्में हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जितेंद्र को जब हम देखते हैं तो गुलजार साहब
1: जंपिंग जैक के नाम से जाने जाते थे,
0: लेकिन गुलजार साहब की फिल्मों में उनका एक अलग रूप देखने को मिला। और अगर नायिकाओं की बात करें तो कौन सी नायिका है आपको पसंद?
1: नायिकाओं में मुझे वो बिचारी अपने सौंदर्य की वजह से

0: उनकी परफॉर्मेंस पे कोई कभी जिक्र नहीं करता है, जबकि वो कलाकार बहुत अच्छी थी अगर आप उनकी सिनेमा उठाएं। लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्य रहा कि वो बहुत हसीन थी,
1: मधुबाला।
0: मधुबाला उनकी सुंदरता पर चर्चा होती है, लेकिन आप जरा मुगले आजम उठा के देखें, आप मिस्टर एंड मिसेस 55 उठा के देखें, आपको वो रेंज मिलेगी, कहाँ कॉमेडी कहाँ सीरियस। वो कलाकार बहुत अच्छी थी, तो मधुबाला मुझे बहुत पसंद थी। नरगिस बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, मीना जी बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, वो उनका एक स्टाइल था। और शबाना बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं अभी के उसमें, करीना अच्छी परफॉर्मर है। बस ये है कि ये लोग स्क्रिप्ट अच्छी चुन लें तो ज्यादा अच्छा हो।
1: शशि कपूर के लिए भी हम यही पढ़ते थे कि वो इतने हैंडसम थे कि उनकी एक्टिंग पर तो बात होती थी लेकिन उनकी खूबसूरती के दीवाने ज्यादा थे।
0: जी जी,
1: तो कई बार आपकी अति सुंदरता भी जो है आपके लिए, आपकी कला के लिए घातक।
0: जैसे अभी ऐश्वर्या राय कितनी खूबसूरत है लेकिन वो परफॉर्मर बहुत अच्छी है। परफॉर्मर अच्छी है, मैंने उनकी कई ऐसी फिल्में देखी है, परफॉर्मर बहुत अच्छी है वो, लेकिन अब जिक्र ही नहीं होता है। आप उनकी सुंदरता में बात करते हैं कि उसमें खूबसूरत लगी ये करी वो सब, जबकि देखिए ना मीना जी भी कम खूबसूरत थी क्या, उनकी अपनी अलग तरह की खूबसूरती थी। नरगिस जी की अपनी खूबसूरती थी,
1: बहुत सुंदर
0: जी,
1: आंखें बोलती थी उनके
0: जी,
1: उनके होंठ बोलते थे जिस तरह से उनका।
0: परफॉर्मर मुमताज भी अच्छी थी। कुछ कलाकार डायरेक्टर के एक्टर होते हैं, आपने देखा होगा कुछ एक्टर्स जो हैं कुछ फिल्मों में बहुत खराब काम करते हैं और कुछ फिल्मों में ब्रिलियंट होते हैं। वो निर्देशक के कलाकार होते हैं। निर्देशक अगर आप देखिए ना, आप शक्ति सामंत की फिल्म कर रहे हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कर रहे हैं, फिर आप किसी और की फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आ जाता है।
1: जी बिल्कुल, कि आपको निर्देशक ने किस रूप में पर्दे पर उतारा,
0: निर्देशक
1: है,
0: कितना स्ट्रांग है अपने काम में।
1: बतौर निर्देशक अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कौन सा ऐसा कलाकार पसंद है जिसने आपके निर्देशन में बहुत ही अच्छा काम किया आपकी नजर में?
0: मेरे निर्देशन में तो मेरे परिवार के ही दो लोग तो काम कर ही रहे, अन्नू भाई और रंजीत भाई ने भी मेरी सीरियल में काम किया था एक्टिंग, जबकि वो एक्टर नहीं है। तो पुरी साहब आसान थे उनके साथ काम करना, अनुभय के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि कई बार वो बड़े भाई भी बन जाते थे। बाकी तो मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया है, चाहे सुरेश ओबेरॉय हो चाहे दिव्या हो, सब का बहुत अच्छा सहयोग मिला।
1: दिव्या भी एक बहुत अच्छी कलाकार,
0: बहुत अच्छी,
1: बहुत ही संचिता कलाकार है
0: जी। और मेहनती बहुत है, अपने काम पे फोकस है उसका और मेहनत करती है, चीजों को बार बार पूछना सवालों को कि ये कैसे है, ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या है, क्योंकि हर को गांव का नहीं मालूम होता ना, गांव के क्या है वो आप निर्देशक या राइटर से पूछते हैं
1: जी,
0: वो गांव में तो नहीं रहे हुए होते, तो वो उस तरह से ना उन लोगों का अपना जो होमवर्क है वो करने में पूरा टाइम बार बार फोन करके पूछना कि ये कर लूं क्या, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब एक कैरेक्टर गांव का होता है तो उनके जो मैनरिज्म है ना, उनके हाव भाव, जैसे गांव का कोई कंधे उचका के ना नहीं कहेगा, ये बहुत ही शहरी जेस्चर है, तो वो ख्याल रखना वो निर्देशक का भी जरूरी है। कलाकार अगर उसमें गच्चा खा जाए, थोड़ा कमजोर हो जाए, तो निर्देशक का वो बनता है। लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जो होमवर्क जिसे बोलते हैं ना, कि फिर गांव का जो कैरेक्टर है वो कैसे उसके हाव भाव होंगे, कैसे हाथ उठा के बात करेगा, कैसे क्या करेगा, ये लोग होमवर्क बहुत करते हैं, इसलिए ये इतने
1: स्टैब्लिश कलाकार हैं, अच्छे और परिपक्व कलाकार हैं, जहां किसी भी फिल्म में इन कलाकारों ने कभी आपको बोर नहीं किया, जैसे हम एक सामान्य शब्दों में कहें, जिसे कहते हैं कि निरुत्साह नहीं किया, हमें कभी निराशा नहीं हुई इन्हें देखकर कि ये क्या एक्टिंग कर,
0: कमजोर नहीं पड़े ये अपने अपने किरदार में,
1: क्योंकि अपने काम को इतना मजबूती के साथ इन्होंने किया है। चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं और फिर एक सवाल आपसे पूछते हैं।
0: मदन मोहन जी का संगीत में एक गाना मुझे बहुत पसंद था, दुल्हन एक रात की, मैं लता जी ने गाया, सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो मैं सो जाऊं,
1: बहुत सुंदर गाना है। चलिए तो सुनते हैं यही गीत
0: जी।

0: बहुत सुंदर गीत सीमा जी आपने हमें सुनवाया, और इससे पता चलता है कि क्लासिक जो है संगीत आपको पसंद है और जो रूह को सुकून दे रहा है।
1: जी।
0: आपकी 2025 में एक आत्मकथा आई किताब के रूप में, उसके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। मैं आप ही से सुनना चाहती हूँ उस किताब के बारे में, उस आत्मकथा के बारे में।
1: हाँ।
0: बहुत ही सुंदर उसका शीर्षक है,
1: यूं गुजरी है अब तलक। जी, तो किताब का ख्याल मुझे ऐसे आया था कई साल पहले। क्या हुआ था कि पुरी साहब से बिछड़ने के बाद आई लॉस्ट माई चाइल्ड।
0: जी।
1: तो उसमें मेरे भाई, मेरी माताजी, वो सब इतने दुखी थे कि मेरे दुखी होने का मुझे समय नहीं मिला, ना अवसर मिल रहा था, क्योंकि सबको रोता देख के अगर मैं भी रो रही होती तो उनको संभालता कौन।
0: जी।
1: तो इसलिए मैंने एक फसाड, एक ना एक आवरण सा ओढ़ रखा था कि कोई बात नहीं, ये जीवन है, ये भी समय निकल जाएगा, और ऐसे करके। लेकिन मेरे अंदर ना एक दावानल चलता रहता था। आपको एक कोना चाहिए जहां आप रो सकें, जहां आप कथारसिस, जिसे हम लोग बोलते हैं, एक एक रेचन हो जाए, अंदर से जो गुबार है वो निकल जाए। तो मुझे, मैं सबके बीच में घिरी हुई थी, सारे मेरे दुख से दुखी थे, उनको मैं अपना दुख दिखा के दुखी नहीं होना चाहती थी। तो मैंने कहा कि कलम ही एक ऐसा मेरा साथी है जो मैं अकेले में जिसको लिख सकती हूँ, और अपने उद्गार पेपर पे ना उसकी स्याही जो है मेरे आंसुओं की तरह उसे निकालूं।
0: जी।
1: तो मैंने अपने बच्चे को एक खत लिखा जो चला गया कि भाई तुम, मेरी कोख इतनी खराब थी कि तुम नहीं रह सके उसमें। तो फिर उससे मैंने कई सवाल पूछे कि तुम क्यों नहीं आना चाहे, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े सपने देखे थे, मैंने तो तुम्हारे लिए सारा कुछ वो करके रखा था कि दुनिया में ऐसे तुम्हें वो करूंगी, ऐसे तुम्हारी तरबियत पालन पोषण करूंगी, कैसे भी अभाव होंगे, कैसे भी कुछ होगा, संघर्ष करूंगी, लेकिन तुम्हें मैं सारे वो सपने जो तुम देखोगे उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो वो सब मैंने खत लिखा उसको। फिर भी सवाल जब वो नहीं हुए तो मैंने बच्चे की तरफ से माँ को एक खत लिखा कि मैं क्यों नहीं आया।
0: जी।
1: तो ये जब लिखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये आत्मा को बड़ी, मेरे कथार्सिस हो गया, एक दर्द जो है निकल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना जो जिंदगी में झंझावात झेले हैं, जिंदगी में जो अनुभव अच्छे बुरे खट्टे मीठे, थिएटर कंपनी के बाबूजी की, जो लोगों ने जाना नहीं है, लोग ये जानते पारसी थिएटर हुआ करता था, नाटक मंडलियां हुआ करती थी, लेकिन उनकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, उनकी स्त्रियां क्या थी, वहां पे स्त्रियों की क्या दशा थी, जो स्टेज पे समाज से उपेक्षित थी, स्टेज पे कमाती थी, लेकिन फिर भी वो पुरुष के सत्ता के अधीन थी वो। तो वो सब मैंने उतारने के लिए मन बनाया, और ऐसे मैंने कहा ये सिर्फ सारी चीजें कहानियों में नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी सारी कहानियां कहाँ लिखूंगी मैं, अपनी आत्मकथा ही लिख दूं, उसमें तो सारे वो कैरेक्टर हैं, वही बिब्बी हैं, वही बुग्गी हैं, और वही चंदा हैं, और वही शरीफ भाई हैं, और वो जो नाटक कंपनी के चरित्र हैं सारे हैं, वो उनको उतारा जो थे हमारी नाटक कंपनी में, क्या मेरी माँ थी उनका संघर्ष, क्या मेरे फादर थे उनका संघर्ष, हमारा संघर्ष के इतने अमीर माता पिता की संतान होके आज देखिए, जब हमारा थिएटर कंपनी जो हमें इतना पैसा और खाना देती थी, उसके बाद जब सिनेमा आया तो थिएटर कंपनियां बंद हो गई, भुखमरी आ गई,
0: है
1: ना, सारी थिएटर कंपनियां बंद हो गई। एक जमाने में जिस फिल्मों ने, सिनेमा ने हमारी रोजी रोटी छीनी, आज वो सिनेमा हमें रोजी रोटी दे रहा है। तो ये पूरा जो ग्राफ है जिंदगी का, ये मैंने उसमें लिया, और लोगों को शैली भी बहुत पसंद आई, कहने का स्टाइल पसंद आया,
0: काफी चर्चित रही ये किताब और 2025 की सबसे चर्चित किताबों में से एक किताब रही ये यूं गुजरी अब तलक। और उसमें मुझे लगता है कि हम
1: साहित्य तक ने तो उसको 2025 की टॉप 10 में बुक में लिया,
0: शामिल किया। और काफी लोगों ने आपको उस वक्त जाना पहचाना, आपके दर्द को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो सीमा जी आगे भी आप यूं लिखती रहे, ये शुभकामनाएं हम आपको देते ही है। चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।
1: जी

0: आगे की नए प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या हैं, बस ये जानना चाहते हैं
1: जी। वो फिल्म बना रही हूँ, दो सीरियल का है वो कर रही हूँ, एक दो महिलाओं पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं जी। एक जगह है जहाँ पर गांव से महिलाएं जो हैं वो नदी के पार करके जाती हैं, कुछ भी नमक भी खरीदना हो तो उनको नदी पार करनी पड़ती है, और नदी कैसे पार करनी पड़ती है, टायर ट्यूब होते हैं ना उसमें बैठ के और अपनी चप्पलों को चप्पू बना के वो नदी पार करती हैं।
0: अरे
1: तो वो मैं बना रही हूँ, अभी पानी थोड़ा सा नदी में कम है तो इस वजह से थोड़ा अब मैं सर्दियों में जाके, तो ये सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि मैं जितना भी काम करूँ, मेरी जो महिलाएं हैं, मैं चूंकि स्त्री हूँ तो मैं स्त्रियों पे ही काम करना चाहती हूँ
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस लाइन में आने वाली स्त्रियों को आप क्या कहना चाहती हैं, युवा स्त्रियों को जो इस लाइन में आना चाहती हैं बतौर राइटर, बतौर निर्देशक, बतौर एक्टर?
1: देखिए, कोई भी विधा, जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक कोई पत्रकार हैं वो एक्टिंग में चले गए तो लोग उनको डिफेंड करने लगे कि भाई लोग सीखते सीखते सीखेंगे। मैं इसके खिलाफ हूँ। एक तो जो कलाकार आता है, जो जैसे अभी NSD से ट्रेंड एक एक्टर आ रहा है
0: जी,
1: ठीक है, आपने उसकी रोजी रोटी छीन रहे, पहली बात। जिसने इसी को पढ़ा है, जो यही कर रहा है, और फिर जब करोड़ों रुपए एक फिल्म में लगते हैं तो वहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई रोटी बनाना है कि धीरे धीरे सीखेंगे।
0: हाँ,
1: नहीं,
0: तो सीखने की प्रक्रिया भी चल रही है।
1: हाँ, ये प्रक्रिया नहीं है, करोड़ों रुपए आप पे लगते हैं तो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि देखिए, दो तरह से आप सिनेमा की तरफ आकर्षित होते, ग्लैमर और पैसा। तो जब ये दो चीजों से आकर्षित होके आप आते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस जो हैं आपको 5% होंगे। लेकिन आप कलाकार हैं, आप पढ़ते हैं, आपने सिनेमा पढ़ा होता है, थिएटर पढ़ा होता है, आपने लिटरेचर पढ़ा होता है, म्यूजिक पढ़ा होता है, ये सारी चीज़ें जब आपने की होती हैं, थिएटर किया होता है और टेक्निक जानते हैं, मतलब ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक डॉक्टर बिना MBBS किए डॉक्टर

0: हम उससे इलाज नहीं करवाएंगे, एक इंजीनियर से बिल्डिंग नहीं बनवाएंगे जब तक कि वो नहीं है। इसी तरह कलाकार को, कला क्षेत्र को आप ऐसे मत सोचिए कि कोई भी आके कर ले, उसके लिए आपको ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, पढ़ाई पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप कुछ बनेंगे।
1: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी आपने एक संदेश युवा आने वाली लड़कियों को खास तौर से दिया है, जो केवल शारीरिक सौंदर्य के बल पर आना चाहती हैं और दूसरी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि किसी भी लाइन में जाने से पहले आपको वहां के लिए पढ़ना और गुनना बहुत जरूरी है खुद को। तो बॉम्बे टॉकीज में आज सीमा जी आपने विविध भारती के लिए अपना अमूल्य वक्त निकाला है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: नहीं, विविध भारती तो जिंदगी में जब हम बच्चे थे तब से जुड़ा हुआ है हमसे, और जहां से जाएंगे तो विविध भारती सुनते हुए ही जाएंगे, कोई ना कोई गाना चलता ही रहेगा।
1: जी, तो चलिए एक और गाना जान लेते हैं इस कार्यक्रम का।
0: जी, एक गाना मजरू साहब का है, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से, LP का म्यूजिक है, ना जा अब कहीं ना जा,
1: दिल के सिवा,
0: दिल के सिवा।
1: क्या बात है।

0: बॉम्बे टॉकीज में आज दोस्तों हमारे साथ थी जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर। और अब बॉम्बे टॉकीज में आज इतना ही। मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत। नमस्कार।
1: ये था

जी, विविध भारती का मुंबई केंद्र है, FM 102.8 और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। शाम की 5 बजना चाहते हैं, कुछ ही पलों में होगा मराठी में समाचार, जिसे हम मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

वो चेहरा मानो प्रकृति की सबसे कोमल और रमणीय रचना हो, जहां हर रेखा में सौंदर्य की मधुर छाया बसी हुई है। कपोलों पर झलकती हल्की लाली संध्या की अंतिम आभासी प्रतीत होती है, और उसकी गहरी भावपूर्ण आंखें किसी अनंत कथा का मौन आमंत्रण देती हुई मन को बांध लेती हैं। अधरों पर सजी मृदुल मुस्कान ऐसे खिलती है जैसे किसी नव प्रभात में कली पहली बार मुस्कुराई हो, जिसमें ना कोई आडंबर है ना बनावट, केवल निष्कलुष आकर्षण। उसके चेहरे का एक समग्र सौंदर्य किसी एक अंग में नहीं, बल्कि उस अद्भुत समन्वय में है, जहां प्रत्येक भाव और प्रत्येक आभा मिलकर एक ऐसी मोहक छवि रचते हैं जो केवल देखी नहीं, बल्कि गहराई से अनुभूति की जाती है।

बंद पलकों से तुझे पढ़ लेना हुनर हो जैसे, बिन नजर के भी तेरा मिलना असर हो जैसे, तेरी आहट ही मेरे दिल में उतर जाती है, कोई खामोश दुआ रूह का सफर हो जैसे, यूं तो आंखों की जरूरत ही नहीं पड़ती, रूह से रूह का मिलना ही नजर हो जैसे।

0: पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। तेरी नजर से ही पहली वो मुलाकात हुई, दिल को खामोश दी एक मीठी सी बात हुई, एक पल ठहरी जो आंखें हैं तेरी आंखों पे, जिंदगी जैसे वहीं से नई शुरुआत हुई। हम तो वाकिफ भी ना थे इस अजब एहसास से, एक नज़र क्या मिली रूह में बरसात हुई। तेरी पलकों की झपक में कोई जादू था, हर खुशी जैसे मेरे नाम की सौगात हुई। कभी किसी की नज़र शरारत से मुस्कुराती है तो लगता है जैसे उसमें कोई राज छुपा हो, एक ऐसा राज जिसे कहना तो वो चाहते हैं मगर कह नहीं पाते। और कभी वही नज़र इतनी गहरी हो जाती है कि उसमें डूब जाने का मन करता है, बिना ये सोचे कि लौट पाएंगे या नहीं।
1: नजरों से कह

मोहब्बत अगर लफ्ज़ों में बयां होती तो शायद इतनी खूबसूरत होती नहीं। असल जादू तो बस इसी में है कि उनकी नज़र चुपचाप उनके दिल को छू लेती है, बिना आवाज़, बिना इजाज़त, और फिर सब कुछ अपना सा महसूस होता है। अगर वही नज़र खफा हो जाए तो जज्बात दम तोड़ देते हैं।

दिल की नजर से तेरा ही नूर दिखता है, हर एक ख्वाब में बस तेरा सुरूर दिखता है। तेरी खामोशी भी जैसे कोई गजल कहे, हर लफ्ज में छुपा हुआ एक गुरूर दिखता है। जब से तेरी चाहत ने छुआ है रूह को, हर दर्द में अब एक सुकून दिखता है। तेरी आंखों की गहराई में डूब कर देखा, वहीं कहीं मेरा मुकद्दर लिखता है। अब दिल की नजर को और कुछ भाता नहीं, हर तरफ बस तेरा ही हुजूर दिखता है।

नजर, निगाहें, आंखें बस जज्बात बयां करती हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ देती हैं। निगाहें वो कह देती हैं जो जुबान नहीं कह पाती, और निगाहें निगाहों की बातों को कह देती हैं। आज के कार्यक्रम छाया गीत में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए,

तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत के साथ, फिल्म का नाम प्यार तूने क्या किया, आवाजें आशा भोंसले, सुखविंदर सिंह, सोनू निगम और साथियों की। गीतकार हैं नितिन रेखवार और संगीतकार संदीप चौटा।

कार्यक्रम का अगला गीत श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज की आवाजों में, फिल्म का नाम है बर्फी। इस गीत को स्वानंद किरकिरे ने लिखा है और धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम था आराधना। इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा और धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने।

0: गुलजार साहब की रचना अभी आपने आरती मुखर्जी की आवाज में सुनी। फिल्म का नाम था मासूम और गीतकार थे गुलजार साहब। संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

भूपेंद्र की आवाज में अभी आपने फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की ये गजल सुनी। कलाम निदा फाजली का था और संगीत खयाम साहब का।

0: दोस्तों, तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे हिंदी में समाचारों के बाद संध्या 6:05 पर। फिलहाल संध्या के 6 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती।

0: के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछा स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा किया और बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि यह रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कांग को परात 41 डिग्री चया मगावर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिलेगा। बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार आनंद एल रॉय को स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। और खेलों में पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन

0: टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने का शेष भाग आप सुनिए। यह आवाजें आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम यादों की बारात। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत निर्देशन में SH बिहारी का लिखा हुआ आपके लिए चुना है। युगल स्वर लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, फिल्म का नाम प्यार झुकता नहीं।
2: मोहब्बत की तड़प ए दिल इधर भी

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: और आइए अब सुनते हैं आशा भोंसले के साथ किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है लावारिस, गीतकार अनजान है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

0: इस युगल गान के साथ ही आज का तराने नए पुराने ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने

लीजिए झरोखा में सुनिए हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता, विशेष जयमाला संध्या 7:00। इसमें आज का कार्यक्रम पेश करेंगी अभिनेत्री जरीना वहाब। इंद्रधनुष का समय है संध्या 7:45, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम जिज्ञासा। हवा महल में रात्रि 8:00 सुनो कहानी भाग 3, कहानी होगी विश्वास। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, वाचक स्वर अमरकांत दुबे का, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। कार्यक्रम चित्रलोक रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:00 कार्यक्रम होगा आपके लिए और 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम संगीतकार और गायक भूपेंद्र सिंह पर केंद्रित होगा, प्रस्तुतकर्ता हैं राघवेंद्र सिंह नेगी। छायागीत का प्रसारण समय रात्रि 10:00, आलेख और स्वर प्रीति मिश्रा का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात और रात्रि 11:00 चित्रपट संगीत और मैटिनी शो का पुनः प्रसारण। तो ये थे आज के मुख्य कार्यक्रम और अब सुनिए हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा। कल सुबह 6:05 पर वंदनवार और चिंतन, 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का 254वां भाग प्रसारित होगा। संगीत सरिता कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 और कल संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार गायिका विदुषी आरती अंकलीकर, इसका 7वां भाग प्रसारित होगा, प्रस्तुतकर्ता हैं रूपाली रूपक। कल सुबह 7:00 हमारा दैनिक कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। त्रिवेणी का प्रसारण समय है कल सुबह 8:15 और दोपहर 2:00, आलेख और स्वर आरती श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कार्यक्रम चित्रलोक कल सुबह 8:30 पर और कल रात्रि 8:15 पर प्रसारित होगा। कल सुबह 9:30 पर और कल ही रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार और ये कार्यक्रम गीतकार नीरज पर केंद्रित होगा, प्रस्तुतकर्ता हैं राघवेंद्र सिंह नेगी। कल सुबह 10:00 पिटारा के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज, लेखिका निर्देशिका सीमा कपूर से हमारी की गई एक बातचीत, इसका भाग 2 आप सुनेंगे, ये अंतिम भाग होगा, प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। विविधा कार्यक्रम कल दिन में 11:00, इसमें सुधीर फड़के पर बातचीत होगी और कार्यक्रम होगा चित्र भारती, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक होंगी। यादों की महफिल कार्यक्रम कल दोपहर 12:05 पर, सुरीला सफर कल दोपहर 1:00 और त्रिवेणी कल दोपहर 2:00। 2:30 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कल दोपहर 3:00 फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग में सुनिएगा नाटक यात्रा का अंत, लेखक डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार और निर्देशक MS बेक। कल दोपहर 4:00 पिटारा के अंतर्गत कार्यक्रम होगा उजाले उनकी यादों के, इसमें फिल्म निर्देशक लेखिका नाटककार पद्मभूषण सई पराजपे से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग प्रसारित होगा, संपादन सहयोग नेहा शर्मा, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। छायागीत का पुनः प्रसारण कल संध्या 5:00। कल संध्या 5:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम तराने नए पुराने, 6:30 पर झरोखा आप सुनेंगे, 6:35 पर संध्या रंजन और
कल संध्या 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम होगा। सैनिकों के शौर्य गाथा महावीर चक्र ब्रिगेडियर अरुण भीमराव हरौलीकर के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। कल संध्या 7:45 पर कार्यक्रम होगा इंद्रधनुष। इसमें सुनिएगा साज और आवाज। गिटार पर होंगे शोमू सिल। हवा महल में कल रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे झलकी लालटेन की वापसी। लेखक केपी सक्सेना, निर्देशक महेंद्र मोदी। आपके लिए कार्यक्रम कल रात्रि 9 बजे और कल रात्रि 10 बजे छाया गीत में आप सुनेंगे आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। कल रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम होगा ढलती जाए रात और 11 बजे विविधा का पुनः प्रसारण। जयरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा। और अब सुनिए कार्यक्रम संध्या रंजन।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: और अब आज का संध्या रंजन कार्यक्रम समाप्त हुआ।
5: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन गाए बजाए जाने वाले रागों की चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की कड़ी में आज सुनिए राग पूरिया कल्याण।
1: संगीत सरिता सुनने वालों को आरती अंकलीकर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप तो जानते हैं कि हम संधि प्रकाश रागों के बारे में कुछ विवरण कुछ चर्चा यहाँ कर रहे हैं। इन्हीं रागों में संधि प्रकाश राग पूरिया कल्याण, इसके बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कई बार हमने देखा है कि गायक जो है पूर्वा कल्याण और पूरिया कल्याण इनको एक ही राग समझ के जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूर्वा कल्याण एक अलग राग है और पूरिया कल्याण अलग है। पूर्वा कल्याण में जो ऋषभ है वो मारवा की तरह और पूरिया कल्याण में ऋषभ जो है पूरिया की तरह लगता है। हालांकि देखा जाए तो इसके स्वर एक ही हैं, लेकिन ये जो ऋषभ का ट्रीटमेंट जो है वो दोनों रागों में अलग है। इसकी वजह से पूरिया कल्याण और पूर्वा कल्याण ये दोनों अलग दिखते हैं। आज हम पूरिया कल्याण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पूरिया कल्याण का जो जन्म है मारवा ठाट से हुआ है। आप जानते हैं कि ये सायंकालीन संधि प्रकाश राग है। संध्याकाल में पूर्वी और भैरव ठाट जन्य पूर्वी गौरी आदि रागों के गाने के पश्चात इस राग को गाना चाहिए। इसका कारण आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसमें धैवत जो है शुद्ध लगता है और पूरिया पूरिया धनाश्री श्री, लेकिन बाकी जो राग हैं उनमें धैवत कोमल है, मारवा में तो शुद्ध है। तो इन रागों को गाने के बाद यानी पूरिया धनाश्री पूरिया, इन रागों के बाद कोमल ऋखब और शुद्ध धैवत लेके जो राग आते हैं उनकी बारी आती है। तो ये पूरिया कल्याण जो राग है संधि प्रकाश राग होने के साथ साथ एक परमेल प्रवेशक राग भी है। कोमल ऋषभ के साथ शुद्ध धैवत होने के कारण ये राग अपने पश्चात आने वाले रे ध शुद्ध वर्ग के रागों की पूर्व सूचना देता है। रे ध शुद्ध वाले रागों के पूर्व एवं रे ध कोमल वाले सायंकालीन संधि प्रकाश रागों के समय यानी कि 4 से 7 बजे सायंकाल के अंतिम चरण में इस राग को गाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो प्रचार में तो लोग 11 बजे तक भी इसको गा देते हैं बजा देते हैं, लेकिन ये उसका सही समय नहीं है। इसको 7 बजे यानी कि सायंकाल के अंतिम चरण में ही गाना चाहिए। इसका वादी स्वर है गंधार, संवादी है निषाद। पूर्यांग से पूर्या कल्याण जो जाता है हम देख चुके हैं। इसका आरोह अवरोह इस प्रकार है।

राग पूरिया कल्याण पर आधारित अब एक गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन गाए बजाए जाने वाले रागों की चर्चा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मशहूर गायिका आरती अंकलीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया।

0: अभिजीत दळवी दिग्दर्शित हम सफर सर्वोत्कृष्ट लघुपट ठरला, तर सर्वोत्कृष्ट कथाबाह्य चित्रपटाचा पुरस्कार भंगार या चित्रपटाला मिळाला. धुळे जिल्ह्यातल्या शिरपूरजवळ आज सकाळी झालेल्या अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला तर 5 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. खाजगी कंपनीनं विकसित केलेल्या देशातल्या पहिल्या विक्रम 1 रॉकेटचं यशस्वी प्रक्षेपण. बियाणे, खते आणि कीटकनाशकासंदर्भात तक्रारींचं निराकरण 7 दिवसात करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय. पुण्यातल्या 3 उन्नत महामार्गांचं भूमिपूजन. पुण्यातली वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी 50,000 कोटींच्या सुविधा उभारल्या जाणार. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते कुमार सप्तर्षी यांचं निधन. आणि राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये आर्टिकल 370, मुक्काम पोस्ट बोंबिलवाडी, स्वरगंधर्व सुधीर फडके, घरत गणपतीची बाजी. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया रात्री 8:05 आकाशवाणी मुंबईच्या राष्ट्रीय बातमीपत्रात. नमस्कार.
1: जी, विविध भारती का मुंबई केंद्र है, FM 102.8 और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर. लीजिए सुनिए कार्यक्रम विशेष जयमाला.
2: मम्मी ने पूछा कहाँ से आ रहे हैं तुम लोग, तो हम लोगों ने बोला हम तो स्कूल से आ रहे हैं. स्कूल से आ रहे हैं, अच्छा चलो अंदर. और अंदर जाके वो जो धुलाई हुई हमारी, आज तक मुझे याद आता तो इतनी हंसी आती है मुझे, क्योंकि इतनी मैं पागल थी फिल्में देखने के लिए. वो शौक तो खैर अभी तक सिलसिला जारी है. अभी भी मैं बहुत फिल्में देखती हूँ. जब भी मेरी शूटिंग नहीं होती है तो मैं फिल्में बहुत देखती हूँ. लेकिन इस वजह से मेरी पढ़ाई जो थी वो बिल्कुल अधूरी रह गई. आज भी मेरी पढ़ाई के लिए मुझे बहुत अफसोस होता है कि उसको मैंने पूरा नहीं किया. लेकिन मैं हमेशा यही कहूंगी कि जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको कभी मेरे जैसा नहीं करना चाहिए. क्लास छोड़ के फिल्में देखने जाएं और पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं होता है. वैसे करके मैंने तो अपनी पूरी पढ़ाई खराब कर ली. अभी जाके मुझे बहुत अफसोस होता है. अच्छा, ये गाना सुनिए अभी.

फौजी भाइयों, स्कूल से निकलकर मैं सीधा पूना फिल्म इंस्टीट्यूट आ पहुंची और वहां पे एक्टिंग के जो भी बुनियादी बातें थी वो हमको सिखाई गई, मतलब किस तरह से कैमरा आप फेस करते हैं, किस तरह से आपको डायलॉग बोलना है। लेकिन इंस्टीट्यूट आके मुझे वहाँ महसूस हुआ कि मैं काम भी कर सकती हूँ। इसका मतलब मैं बचपन से फिल्मों में डांस करना चाहती थी क्योंकि मुझे डांस बचपन से मैं सीख चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता कि मैं पहले डांसर हूँ फिर बाद में एक्ट्रेस हूँ। तो इंस्टीट्यूट आके सब लोग, जैसे मेरे साथी थे शबान आजमी, शैलेंद्र सिंह, जो ये हमारे बैच के थे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ हम लोग काम करते करते और मुझे देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि मैं काम भी बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो उसके बाद फिर वहाँ पे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में हमारा कोर्स ख़त्म होने के बाद मैं जब बॉम्बे आई तो वहाँ जैसे जया जी हैं, नहीं जया जी के बारे में मैं आपको इस गाने के बाद में बताऊंगी, पहले गाना सुनिए।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: शत्रु जी हैं, वो लोगों ने मेरे लिए बहुत मदद की और हर जगह मेरा नाम रिकमेंड किया और काम दिलाने की मुझे बहुत कोशिश की। और जया जी जितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं और उतनी अच्छी औरत हैं, और वो हमेशा मुझे घर बुलाती हैं और बहुत प्यारी प्यारी बातें मुझे समझाती, जैसे कि क्या करना चाहिए इस इंडस्ट्री में और क्या नहीं करना चाहिए। उनके पास 5 मिनट बैठने के बाद 5 साल का तजुर्बा मिल जाता है। वो मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मानती हैं। लेकिन जया जी के बारे में मैं कितना भी कहूँ बहुत कम ही होगा। अच्छा, अभी मैं आपको शत्रु जी के बारे में बाद में बताऊंगी, पहले गाना सुनिए।

जब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी वहां पे त्रुज ने हमारा एग्जाम लिया था, डिप्लोमा एग्जाम। तो उस जमाने से मैं शत्रुजी को मैं जानती थी और मैंने शत्रुजी से एक दिन कहा था मुझे आपके साथ फिल्म करना है। उसके बाद जब मैं बॉम्बे आई थी तो शत्रुजी एक फिल्म मेरे साथ करने के लिए राजी हो गए। उसके बाद हमारी फिल्म शुरू हुई थी अनोखा, और शूटिंग के दरमियान वो इतना हंसाते थे। अच्छा, एक गाना सुनिए।

फौजी भाइयों, जब मैं अनोखा की शूटिंग करती थी उन दिनों मैं बिल्कुल नहीं आई थी इंडस्ट्री में, और मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि किस टाइम पे आना है, किस टाइम पे जाना है। और डायरेक्टर साहब ने कहा कि भाई तुम्हारी कल शूटिंग 9 बजे है, तो जनाब मैं तो 9 बजे ठीक पहुंच गई थी। लेकिन बाद में वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि 9 बजे विद मेकअप तैयार रहना था, और मैंने जब मेकअप किया, हेयर ड्रेसिंग की, उसके बाद जब मैं सेट पे पहुंची तो 11 बज गए थे। लेकिन मेरे लिए सब लोग वेट कर रहे थे वहां पे, ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। वहां जाने के बाद जुगल जी ने मुझे बहुत डांटा कि तुमने ऐसा किया, ये बहुत बुरा है। तो एक सेकंड के लिए मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा सब लोगों के सामने डांट दिया। जब जाके मैंने सोचा इस बात पे मैंने गौर किया तो सच्ची ये गलती मेरी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरी वजह से 30-40 जो भी लेबर बैठे हुए थे और वर्कर्स थे, कैमरामैन, डायरेक्टर, ये सब लोग मेरे लिए वेट कर रहे थे, और मेरी वजह से 3-4 घंटे वेस्ट हो गए। इसके बाद मैंने इस बात को कभी रिपीट नहीं किया, शूटिंग पे कभी मैं देर नहीं गई। और अगर उस दिन वो मुझे नहीं डांटते तो देर से आने की आदत मुझ में आ जाती। तो इसके लिए मैं जुगल जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक गाना मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है टाइम ज्यादा नहीं है। इसके बाद फिर

0: रहा।
1: जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: वेगाच्या वेडानं पाखरू गडप होत, एका चुकीमुळे आयुष्य दूर जात। मद्यपान करून गाडी नको रे धरू, आई बाबांची स्वप्न नको भंग करू। झेब्रा पट्टीवर थांब रे जरा, आपलेच लोक वाट पाहती घरा। जीवन अनमोल आहे, वेग टाळा, सुरक्षित प्रवास हाच खरा।

फौजी भाइयों, अभी मैं आपको एक मजेदार बात सुनाती हूँ। इंसान की जिंदगी में हमेशा दो ख्वाहिशें होती हैं, या तो आप ये करना चाहो या दूसरा। ऐसे मेरी जिंदगी में भी दो चॉइस थी, एक तो एक्ट्रेस बनने का या एयर होस्टेस बनने का। क्योंकि मुझे मालूम था एक्ट्रेस बनने का शौक इतना जल्दी मेरा पूरा नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है एक्ट्रेस बनने के लिए, काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एयर होस्टेस बन जाए। और एक दिन मैंने अप्लाई किया था एयर होस्टेस के लिए और मैंने अपनी फोटोज़ भेजी थी, तो वो लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। जनाब, हम पहुँच गए इंटरव्यू के लिए। जब मैं अंदर गई थी तो वहाँ पर चार औरतें और चार आदमी बैठे हुए थे, और जैसे मैं जाके पहुंची और मैं बैठ गई वहाँ पे, तो वो लोगों ने मुझसे अंग्रेजी में तरह तरह के सवाल एक से एक पूछने लगे वो लोग, और मैं चुपचाप मैं उनका मुंह देखती रही। आधा घंटा गुजर गया तो उसके बाद एक जनाब पूछने लगे, भाई आपको बोलना तो आता है? तो मैंने कहा, मुझे सिर्फ हिंदुस्तानी बोलना आता है। फौजी भाइयों, असली बात तो ये थी कि मुझे अंग्रेजी बिल्कुल बोलनी नहीं आती थी।

फिर उसके बाद मैं घर आई, घर आके मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अंग्रेजी जरूर सीखना है। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद मैं अंग्रेजी बोलना सीख गई। वैसे अभी मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ। तो उसके बाद अंग्रेजी मैं सीख तो गई, लेकिन मैं ज्यादा हिंदुस्तानी बोलने में मुझे ज्यादा मजा आता है, और इस बात का मुझे बहुत फक्र है कि मैं भी खुद एक हिंदुस्तानी हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छा गाना सुनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है।

जैसा कि फौजी भाइयों, अभी तो काफी वक्त हो चुका है, इसलिए मैं अपना प्रोग्राम खत्म करना चाहती हूँ। लेकिन जाने के पहले मैं आपको एक बहुत अच्छा गाना सुनाती हूँ जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़।

फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया जानी मानी अभिनेत्री जरीना वहाब ने। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।

0: जी दर्शन थू इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स एवं हवन सामग्री।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
0: देव दर्शन धूप।
2: कार्यक्रम अमिताभ बच्चन।
3: शुरू शुरू में लोग मुझसे कहते ये भी कोई नाम हुआ अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया।
2: मीना कुमारी।
4: आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ।
2: जीवन।
5: फौजी भाइयों, कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था।
2: देव आनंद।
6: फौजी भाइयों, आपने 30 बरस की फौजी जिंदगी में मैंने कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए।
2: बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला। हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप हैं विविध भारती के संग
1: जिज्ञासा।
0: जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। ये टीम दो बार यानी 1998 और साल 2018 में चैंपियन भी रह चुकी है। 16 फीफा विश्व कप में भाग ले चुकी फ्रांसीसी टीम ने कुल 8 बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता है या उपविजेता रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस का प्रदर्शन बड़ा शानदार रहा है। इससे पहले 2018, 2022 और 2026 में फ्रांस की टीम सेमीफाइनल तक तो पहुंची, लेकिन स्पेन से 0-2 से हार कर फ्रांस की टीम बाहर हो गई है। ये फीफा वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा सेटबैक है, क्योंकि फ्रांस को डेफिनेट विनर माना जा रहा था, लेकिन स्पेन ने यह साबित कर दिया है कि वो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे मजबूत टीमों में से एक क्यों मानी जा रही हैं। स्पेन ने डलास स्टेडियम में टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में बेहद मजबूत फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। लुइस डेला फोंते की कप्तानी में स्पेनिश टीम के इस बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के साथ ही वो 96 सालों में दूसरी बार और 44 सालों में पहली बार एक ऐसी टीम बन गई है जिसने वर्ल्ड कप में ये उपलब्धि हासिल की है। जिस किसी ने भी ये सेमीफाइनल मैच देखा, इसके रोमांच को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर स्पेन ने फ्रांस को लगातार बैकफुट पर रखा। फ्रांस किसी भी तरह से चैंपियन की तरह उस दिन नहीं खेल रही थी। इससे साबित हो गया कि खेल के मैदान पर कोई कोई दिन आपका होता ही नहीं है। आप कितनी भी ताकत लगा दें, आपके पांसे सही नहीं पड़ते।

फ्रांस के साथ उस दिन बिल्कुल यही हुआ था। स्पेन दूसरी बार फाइनल में पहुंचा है। स्पेन ने यूरो 2024 जीता और मौजूदा यूरोपियन चैंपियन के तौर पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन पहुंच चुका है। जब वो पिछली बार 2010 के फाइनल में पहुंचे थे जिसे उन्होंने जीता था, तब स्पेन मौजूदा यूरो चैंपियन भी थी जिसने 2010 की ट्रॉफी जीती थी। अब स्पेन मौजूदा यूरो चैंपियन है और दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचकर यूरो चैंपियन होने के नाते फीफा जीतने के मुहाने पर खड़ा हुआ है। वेस्ट जर्मनी ऐसा करने वाली पहली टीम थी जिसने साल 1972 और 1980 के यूरो चैंपियन के तौर पर 1974 और 1982 के फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। अगर स्पेन ये टूर्नामेंट जीतता है तो वो मौजूदा यूरो चैंपियन के तौर पर दो फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी। जर्मनी ने 1972 के यूरो चैंपियन के तौर पर 1974 का टूर्नामेंट जीता था। स्पेन का 16 साल का इंतजार खत्म हो गया है और वो फीफा वर्ल्ड कप के 96 साल के इतिहास में दूसरी बार फाइनल में पहुंचे हैं। पिछली बार 2010 में फाइनल में पहुंचे थे, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में नीदरलैंड्स को हराकर चैंपियन बन गए थे। उसके बाद से स्पेन राउंड ऑफ 16 से आगे नहीं बढ़ पाया था। 2014 में जब वो डिफेंडिंग चैंपियन थे तब तो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे। सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस पर पूरी तरह से दबदबा बनाकर रखा था। फ्रांस टूर्नामेंट में सबसे खतरनाक अटैक करने वाली टीम के तौर पर पहुंचा था और उसने 16 गोल किए थे। हालांकि स्पेन की डिफेंसिव ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने मैच में पूरी तरह से कब्जा जमा कर रखा और फ्रांस को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि स्पेन के गोलकीपर एक पत्थर की दीवार है जिसे भेदना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। मिकेल ओयार जाबल ने 22वें मिनट में पेनल्टी से स्पेन के लिए पहला गोल किया। इसके बाद 58 मिनट में पेड्रो पारो ने गोल करके मैच का नतीजा तय कर दिया। 2010 के बाद पहला मौका था जब फ्रांस को फीफा वर्ल्ड कप मैच में 2 गोल के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में एम्बापे का प्रदर्शन बहुत मामूली रहा, वो उम्मीद के मुताबिक खेल नहीं कर पाए और फ्रांस के लिए कोई गोल नहीं कर पाए। उनके जितने भी शॉट थे वो ऊपर से साइड से निकलते चले जा रहे थे और समर्थक पूरी तरह से निराश हो रहे थे। स्पेन का सामना फाइनल में अर्जेंटीना से होगा और ये मुकाबला 20 जुलाई को खेला जाएगा। मेसी के पास नंबर 1 बनने का मौका है। स्पेन और फ्रांस के पहले सेमीफाइनल के बाद सबसे ज्यादा गोल करने वाले टॉप 10 प्लेयर्स में वो शामिल हैं। फीफा 2026 के पहले सेमीफाइनल के बाद गोल्डन बूट की रेस में फ्रांस के एम्बापे नंबर 1 पर हैं और मेसी के पास उन्हें पीछे छोड़ने का मौका है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। इस वर्ल्ड कप के दोनों सेमीफाइनल हो चुके हैं और अब ये तय हो चुका है कि स्पेन को भिड़ना है अर्जेंटीना के साथ। स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरी बार फाइनल में पहुंचने की जगह बनाई है। इस लिस्ट में एम्बापे पहले स्थान पर बने हुए हैं। मेसी के पास नंबर 1 बनने का मौका है। एम्बापे पहले स्थान पर हैं पर मेसी

चूंकि अब फाइनल खेलेंगे तो वो सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। एम्बापे ने इस सीजन में कुल 8 गोल किए हैं और 3 गोल असिस्ट उनके नाम पर हैं। वहीं अर्जेंटीना के कप्तान ने 8 गोल किए हैं और 2 गोल असिस्ट उनके नाम पर हैं। फ्रांस की तरफ से पहले सेमीफाइनल में एम्बापे एक भी गोल नहीं कर पाए थे। अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया है और वो फाइनल में पहुंच गई है। तो अब तो मेसी के पास गोल्डन बूट जीतने का शानदार मौका है। पहले सेमीफाइनल के बाद सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में एम्बापे पहले नंबर पर हैं, मेसी दूसरे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर अभी एर्लिंग हॉलैंड हैं और जूड बेलिंगहम चौथे नंबर पर हैं और हैरी केन पांचवें नंबर पर हैं। किलियन एम्बापे ने 8 गोल किए हैं और 3 गोल असिस्ट उनके नाम पर हैं। लियोनेल मेसी 8 गोल 2 गोल असिस्ट, एर्लिंग हॉलैंड 7 गोल, जूड बेलिंगहम 6 गोल और 1 गोल असिस्ट और इसके बाद हैरी केन 6 गोल 1 गोल असिस्ट और उस्मान डेम्बले 5 गोल और 2 गोल असिस्ट। ये हैं चोटी के वो खिलाड़ी जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाली फहरिस्त में अपना नाम दर्ज किया है। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने अंतिम लम्हों में जीत दर्ज की। एक समय ऐसा लग रहा था कि बस मेसी का सपना टूटने ही वाला है क्योंकि इंग्लैंड तकरीबन पूरे मैच में 1-0 से आगे था, लेकिन मैच के आखिरी लम्हों में अर्जेंटीना ने पहले मैच बराबरी पर किया और फिर इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में गोल करके बढ़त बना ली। इस तरह से अर्जेंटीना ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला 2-1 से जीत लिया और अब फाइनल में होगा मुकाबला अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन। लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना 7वीं बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है और अब 2026 विश्व कप का खिताबी मैच अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन होगा।

इंग्लैंड का सफर सेमीफाइनल तक ही थम गया है। हालांकि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तीसरे स्थान के लिए मुकाबला बाकी है, जब हम आपके लिए जिज्ञासा कार्यक्रम का ये अंक रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंग्लैंड ने दूसरे हाफ में गॉर्डन के गोल की मदद से बढ़त ले ली थी, लेकिन अर्जेंटीना ने 7 मिनट के अंदर 2 गोल करके मैच को पूरी तरह से पलट दिया। अर्जेंटीना के लिए सबसे पहले इंजो फर्नांडिस ने गोल दागा और फिर इंजरी टाइम में लाउतारो मार्टिनेज ने गोल करके टीम को 2-1 की बढ़त दिलाई। अर्जेंटीना ने आखिरी समय तक इस बढ़त को बाकी रखा। लियोनेल मेसी भले इस मैच में कोई गोल नहीं कर सके, लेकिन दोनों गोल करने में मदद लियोनेल मेसी ने ही की है। और अब फाइनल में लियोनेल मेसी के पास मौका है गोल्डन बूट को अपने नाम करने का। अर्जेंटीना की टीम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई है और लियोनेल मेसी तीसरी बार फाइनल में पहुंचने वाली टीम का हिस्सा हैं। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया। इससे पहले 2014 और 2022 में फाइनल में पहुंचने वाली अर्जेंटीना की टीम में मेसी शामिल थे। जरा सोचिए कि इस लेजेंड खिलाड़ी का ये तीसरा वर्ल्ड कप फाइनल होगा। वो ऐसे छठे खिलाड़ी हैं जो 3 बार फाइनल में पहुंचने वाली टीम का हिस्सा हैं। आइए इन खिलाड़ियों के बारे में आपको बताते हैं। ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी पेले सबसे ज्यादा 3 फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी हैं। हालांकि वो 2 बार ही फाइनल खेल पाए। 1962 में इंजरी की वजह से वो खिताबी मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाए थे। अब जर्मनी के खिलाड़ी पियरे लिटबार्स की, जर्मनी ने 1982, 1986 और 1990 में लगातार 3 बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई थी। पियरे लिटबार्स की उस टीम का हिस्सा थे, हालांकि उन्हें भी 2 ही फाइनल खेलने का मौका मिला था। लोथार मथास जर्मनी के खिलाड़ी पियरे लिटबार्स्की के साथ लोथार मथायस भी 1982-86 और 1990 के फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी की टीम का हिस्सा थे और लुथार को भी 2 ही फाइनल खेलने का मौका मिला था। रोनाल्डो नजारियो ब्राजील के खिलाड़ी, ब्राजील की टीम 1994 में फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुकी है। 1998 में टीम को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था, तो 2002 में वो

चैंपियन बनी थी। रोनाल्डो नजारियो तीनों टीमों में थे, लेकिन 1994 में उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला था। केफू ब्राजील के खिलाड़ी, फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीन फाइनल खेले हैं। 1994, 1998 और 2002 के वर्ल्ड कप फाइनल में वो ब्राजील के लिए खेले थे। और अब लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी के पास काफू के बाद तीन फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में खेलने वाले दूसरा खिलाड़ी बनने का मौका है। वो 2014 और 2022 में फाइनल खेले थे और इस फाइनल में तो उनका खेलना तकरीबन तय है। तो जरा देखिए कि कैसे इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल है, कितने सारे रिकॉर्ड्स का मौका होगा। उस दिन फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा, जिसमें लियोनेल मेसी और लामिन यमाल पहली बार आमने सामने होंगे। जहां स्पेन ने अपनी शास्त्रीय और तकनीकी शैली से प्रभावित किया है, वहीं मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने अपने आक्रामक और जुझारू खेल से रॉक बैंड जैसी, एक युद्ध के टैंक जैसी ऊर्जा दिखाई है और ये बहुत कमाल की बात है। कुल 35 दिन 102 मुकाबलों के बाद यह तय हो चुका है कि या तो लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम फीफा वर्ल्ड कप का खिताब बचाने वाली तीसरी टीम बन जाएगी, या फिर युवा सनसनी लामिन यमाल स्पेन को दोबारा 2010 वाला करिश्मा दिखाते हुए फुटबॉल का सरताज बना देंगे। दो बड़े सितारे आमने सामने होंगे, लियोनेल मेसी और यमाल। हालांकि अब तक मैदान पर कभी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेला है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात है दोनों से जुड़ी हुई। जब यमाल नन्हे से बच्चे थे, तब एक चैरिटी फोटोशूट के दौरान मेसी ने उन्हें गोद में लेकर नहलाया था। अब ये बच्चा बड़ा हो चुका है और लियोनेल मेसी के साथ फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्हीं को टक्कर देगा। टूर्नामेंट ने बार बार मुश्किल हालात में अर्जेंटीना ने जिस तरह से वापसी की है, उससे ये लगता है कि बेहद जिद्दी और शिद्दत से भरी टीम है अर्जेंटीना की। स्पेन ने खेल में टेक्निक, धैर्य और लय का ऐसा तालमेल दिखाया कि ऐसा लग रहा था मानो फुटबॉल नहीं हो रहा है बल्कि कोई वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा हो रहा है। वहीं अर्जेंटीना का तरीका बिल्कुल अलग है। उनका जो तरीका है वो ज्यादा आक्रामक है, शारीरिक टकराव वाला है। मंच सज चुका है और अब मुकाबला होना बाकी है। याद रखिए कि 20 जुलाई की मध्य रात्रि को ये मुकाबला होना है और अगले जिज्ञासा कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि फीफा चैंपियन कौन है, फुटबॉल का सरताज कौन बना है।

आज जिज्ञासा कार्यक्रम में इतना ही। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। जिज्ञासा।

0: जी, विविध भारती का मुंबई केंद्र है, एफएम 102.8 और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

जी, विविध भारती का मुंबई केंद्र है, FM 102.8 और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं फिल्म धड़कन का दो गाना, युगल स्वर अलका याग्निक और सोनू निगम के, गीतकार समीर हैं और संगीत नदीम श्रवण का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक को। फिल्म का नाम है जान, गीत रचना आनंद बख्शी की और धुन आनंद मिलिंद की।

0: जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: बताओ मेरे दोस्तों, कैसे हो सब? कान खोल के सुन लो मेरा संदेशा, अब धरती माँ का संदेशा ले आया हूँ। अब नहीं बदलोगे तो बदलोगे कब? धरती माँ से कल मैं गया था मिलने, उसके दिल की वेदना को समझने। उसी का संदेशा तुम तक लाया हूँ, अब नहीं सुधरेंगे तो डूबेंगे सब। तो सुनो सुनो सुनो, पानी बचाओ रे।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: हम आपको बताना चाहेंगे कि विशेष जयमाला कार्यक्रम में कल संध्या 7 बजे आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत स्क्वाड्रन लीडर अजमादा बी देवैया पर केंद्रित कार्यक्रम। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का और प्रस्तुतकर्ता हैं तेजश्री कांबले। याद रखें कल संध्या 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा स्क्वाड्रन लीडर अजमादा बी देवैया पर केंद्रित होगी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम रिफ्यूजी, स्वर सोनू निगम और अलका याग्निक के। इसे जावेद अख्तर ने लिखा है और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से।

0: अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
3: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद के निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
5: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
0: हुर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमेरिका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रही। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन के को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर के खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

रात्रि के 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है।

किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था कॉल गर्ल। गीतकार थे नक्श लायलपुरी और संगीत दिया था सपन जगमोहन ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम याराना, स्वर एक बार फिर किशोर कुमार का, गीत रचना अनजान की और धुन राजेश रोशन की है।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में लिया है। फिल्म का नाम है नाखुदा। गीत रचना निदा फाजली की और धुन बनाई है खयाम साहब ने।

बात है। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म स्वर्ग नर्क से हमने लिया है। इसे आवाज किशोर कुमार ने दी है, धुन राजेश रोशन की और शब्द आनंद बख्शी के हैं।

0: किशोर कुमार और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था स्वर्ग नर्क।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में आप सुनिए राहुल देव बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाज़ी। फिल्म का नाम शरीफ बदमाश।

किशोर कुमार और आशा भोसले को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था शरीफ बदमाश। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज फिल्म ब्लैकमेल के लिए। शब्दकार राजेंद्र कृष्ण और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म यकीन का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी हैं और संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: मोहम्मद रफी के गाए फिल्म यकीन के इस गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी आवाज जिसके बारे में गुलजार साहब ने कहा था, उनकी आवाज ऐसी है जैसे किसी पहाड़ी से टकराने वाली बारिश की बूंदें, वो तन मन को तरोताजा कर देती हैं। उनकी मखमली आवाज

कम होंगी, बल्कि उनकी गिटार की बातें ज्यादा होंगी जो उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मी गानों में बजाया। यानी ये तय है कि आज के फनकार कार्यक्रम में आज ऐसी प्रतिभा की बातें हो रही हैं जो एक बेहतरीन गायक थे, लेकिन उसके साथ साथ थे एक बेमिसाल गिटार वादक, और उनके गिटार से सजे हैं फिल्मी दुनिया के कुछ बेमिसाल गाने। ये शायद पहली बार हो रहा है कि आज के फनकार कार्यक्रम में हम इस गायक की गायकी की प्रतिभा की बातें कम करें और उनके गिटार की बातें ज्यादा करें। आज के फनकार आज केंद्रित है जाने माने गायक और गिटार वादक भूपेंद्र सिंह।

भूपेंद्र सिंह का जन्म 6 फरवरी 1940 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। उनके पिता एक जाने माने गायक और संगीतकार थे, उनका नाम था नत्था सिंह। उन्होंने भूपेंद्र को गाने की और गिटार की तालीम बचपन से ही देनी शुरू कर दी थी। बचपन के इन दिनों में ही भूपेंद्र की दिलचस्पी गजल गाने में भी हो गई थी और वो आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ गए थे। फिर ये हुआ कि संगीतकार मदन मोहन एक बार दिल्ली आए। जाने माने संगीतकार सतीश भाटिया के घर पर एक पार्टी दी गई और इस पार्टी में मदन मोहन ने भूपेंद्र सिंह को सुना। मदन जी ने कहा कि तुम्हें मुंबई आना चाहिए और वहां गायकी में अपनी तकदीर आजमानी चाहिए। इसके कुछ दिन बाद भूपेंद्र को चेतन आनंद ने बुलाया फिल्म हकीकत के इस गाने को गाने के लिए। जरा सोचिए कि एक दुबला पतला नौजवान और उस स्टूडियो में थे कितने सारे लेजेंड, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, तलत महमूद और इन सब के बीच भूपेंद्र

0: मुझे।
1: भूपिंदर सिंह वैसे तो स्पेनिश गिटार बजाया करते थे, लेकिन मुंबई में गिटार की और ज्यादा बारीकियां उन्होंने सीखी भारतीय फिल्म उद्योग के बेमिसाल गिटार वादक भानु गुप्ता से, जो आर डी बर्मन की टीम का हिस्सा थे। तकरीबन 2 बरस तक भूपिंदर सिंह भानु गुप्ता से सीखते रहे। फिर एक इत्तेफाक हुआ, भूपिंदर सिंह मुंबई में एक 12 स्ट्रिंग गिटार खरीद रहे थे। उनके साथ गए थे फिल्म उद्योग के एक और गिटारिस्ट सुनील कौशिक। इत्तेफाकन भूपिंदर सिंह की मुलाकात आर डी बर्मन से हुई, और उसके बाद आर डी बर्मन से भूपिंदर का जो नाता बना वो आर डी बर्मन के इस दुनिया से जाने यानी 1994 तक कायम रहा। पंचम के लिए भूपिंदर सिंह ने कई गानों में बेमिसाल गिटार बजाया है, उसकी बातें करेंगे बाद में। लेकिन पहले आपको बताएं कि हकीकत आने के बाद फिल्म आखिरी खत आई 1966 में। इस फिल्म में भूपिंदर सिंह ने न केवल एक गाना गाया बल्कि इस गाने को उन्हीं पर फिल्माया भी गया।

सन 1968 में भूपेंद्र सिंह ने पहली बार अपनी गजलों का एक ईपी रिलीज किया। ईपी यानी छोटा वाला रिकॉर्ड। इसमें उन्होंने गालिब और प्रेम जलंधरी को गाया था। इसके बाद भूपेंद्र सिंह का दूसरा एल्बम आया, जिसमें उन्होंने गजलों में स्पेनिश गिटार, बास और ड्रम्स का इस्तेमाल किया। और फिर गुलजार साहब के साथ वो जो शायर था, गजलों के पूरे स्ट्रक्चर को भूपेंद्र सिंह ने पूरी तरह से बदल दिया। बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही प्रयोगवादी एल्बम था वो जो शायर था। पर आज भूपेंद्र की गायकी से ज्यादा बातें होने वाली हैं भूपेंद्र के गिटार की। पंचम के साथ भूपेंद्र के गिटार की तरंगें अब आपको सुनाई देंगी। सबसे पहले 12 स्ट्रिंग गिटार का जादू, फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्ण।

बातें हो रही हैं उन गानों की जिनमें संगीतकार आर डी बर्मन के निर्देशन में भूपिंदर सिंह ने बजाया गिटार। फिल्म का नाम जवानी दीवानी।

आरडी बर्मन ने बतौर गिटारिस्ट ही भूपिंदर सिंह का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में पंचम से गाने भी गवाए। सन 1972 फिल्म परिचय

आरडी बर्मन के साथ भूपिंदर के गिटार का जादू आपको सुनाई पड़ता है 1975 में आई फिल्म शोले के इस गाने में।

ऐसा नहीं है कि भूपिंदर सिंह ने सिर्फ आरडी बर्मन के लिए ही अपने गिटार के तार छेड़े। भूपिंदर सिंह ने मदन मोहन के लिए कुछ फिल्मों में गिटार बजाया, जैसे फिल्म

फिल्म कादंबरी के इस गाने में भूपिंदर सिंह ने गिटार बजाया, संगीत वलायत खान साहब का था। आशा भोसले का ये गाना, कविता अमृता प्रिय।

इस गाने में भूपिंदर सिंह ने एकॉस्टिक गिटार बजाया, सुनील कौशिक ने इलेक्ट्रिक गिटार, फ्रेंको वाज ने ड्रम्स बजाए और आज के जमाने के जाने माने संगीतकार ए आर रहमान तब इलैया राजा के साथ कीबोर्ड बजाते थे।

0: गले लगा ले।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने खास तौर पर भूपेंद्र सिंह को याद किया और फोकस किया उन गानों पर जिनमें है भूपेंद्र सिंह का बजाया गिटार, पर उनकी आवाज के बिना इस कार्यक्रम को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो एक झलक उनके कुछ मशहूर गानों की।

0: भूपिंदर सिंह तो चली गए, लेकिन रह गए वो गाने जिनमें उनका गिटार है, रह गई उनकी गजलें और रह गए उनके फिल्मी गाने। भूपिंदर सिंह हमें हमेशा शिद्दत से याद आएंगे। विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने गायक और गिटारिस्ट भूपिंदर सिंह पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का था। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं विको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है छाया गीत। आप सभी को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। सावन की फुहारें चारों ओर अपनी खुशबू बिखेर रही हैं। कहीं भीगती गलियां हैं तो कहीं बारिश के गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। लेकिन इस खुशनुमा मौसम में भी एक दिल ऐसा है जो किसी अपने की याद में खोया हुआ है। मौसम मुस्कुरा रहा है मगर उसकी आंखें किसी के इंतजार में रास्ता देख रही हैं।

0: श्रोताओं, सावन का मौसम जहां प्रकृति को हरा भरा कर देता है, वहीं विरह के क्षणों को और भी गहरा बना देता है। बरसती फुहारें, बहती नदियां और घिरती काली घटाएं मन में किसी अपने की याद जगा जाती हैं। दूर बसे प्रियतम की प्रतीक्षा में बीतते दिन और लंबी लगती रातें इस मौसम की एक अलग ही कहानी कहती है।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
2: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
2: पवन करे शोर।
3: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

बरसात का मौसम यादों का मौसम भी होता है। खिड़की पर गिरती बूंदे, ठंडी हवा के झोंके और भीगती हुई शामें अक्सर उन लोगों की याद दिला जाती हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर बूंद कोई पुराना संदेश लेकर आई हो। मन बार बार उन्हीं बीते पलों में लौट जाना चाहता है जहां साथ था, बातें थी और ढेर सारी मुस्कानें थी।

0: छाया गीत के शेष गाने आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

कभी आसान नहीं होता, लेकिन प्रेम की सबसे बड़ी पहचान भी यही है कि वह उम्मीद का साथ नहीं छोड़ता। यही उम्मीद मन को हर मौसम में जिंदा रखती है।

बाहर सावन की रिमझिम है, लेकिन भीतर स्मृतियों का एक लंबा और नीरव मौसम पसरा हुआ है। समय ने बहुत कुछ बदल दिया है, फिर भी कुछ चेहरे, कुछ आवाजें और कुछ एहसास दिल से दूर नहीं हो पाते। बीते हुए कल की धुंधली परछाइयां आज भी मन के आकाश पर मंडराती रहती है। एक अनजानी सी कसक, एक अधूरी सी चाह और एक गहरा सा खालीपन पंक्ति में महसूस होता है, और एक गहरा सा खालीपन हर पंक्ति में महसूस होता है। ये गीत उस मौन पीड़ा का स्वर है जो अक्सर आंखों से नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों से बहती है। यादों का ये बोझ दुख नहीं बल्कि प्रेम की अमिट छाप बनकर जीवन के साथ चलता रहता है।

जिंदगी यादों में ही ठहर जाने वाली है। जब जब बादल गहराएंगे, दिल के खालीपन को छू जाएंगे। कुछ चेहरे धुंध बनकर आंखों में उतरेंगे, कुछ अधूरी बातें फिर से दस्तक देगी। बरसात की हर बूंदों में बीते लम्हों की, बरसात की हर बूंद में बीते लम्हों की आहट होगी, और हम मुस्कुराते हुए भी किसी अपने को चुपचाप याद कर रहे होंगे। बारिश की बूंदें यूं ही गुनगुनाती रहे, यादें यूं ही महकती रहें, और दिलों में बसे उम्मीदें हमेशा रोशन रहे। हाँ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें, रविवार 26

0: जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी, विविध भारती का मुंबई केंद्र है FM 102.8 और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ढलती जाए रात।